रब बारे चीन दी एक कहावत अनुसार बच्चियां मलाहां अते नशे च डिग्गे शराबियां दी रखिया रब आप करता है। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: कुछ लोग समझदे ने बस इना कुराग नू कुछ लोग समझदे ने बस इना कुराग नू सोने दी जे है बांसुरी तां बेसुरी नहीं
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे मन चाहे गति गीत सुनावांगे हर मन रेडियो ते।

0: कट्टा के मुंडे साढ़े नाल है के चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
1: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
2: गल सुन तू तो उ बड़ा सोहना गाउन लग पाया गाउन ही लग पाया।
3: माई मोनो गाउन बाणी का काम छड़िया थोड़ा।
2: हाँ
3: ओ ता अपना कल भी प्रोग्राम है डंगरा दे अस्पताल च।
2: डंगरा दे अस्पताल?
3: आहो
2: ने डंगरा नु सुनान जाएगा।
3: ओ पशुआ नु नी।
2: हाँ।
3: डंगर डॉक्टर बथेरे ने होर भी पब्लिक बड़ी आऊगी।
2: अच्छा।
3: तू आई उत्ते प्रोग्राम ते गाउन पानी सुनावांगे।
2: ला फिर चंगा मैं कल तेरा गाउन सुनने वास्ते आऊंगी।
3: लो जी अजकल कालजां दे विच होस्टल च कई काके नशा पत्ता बहुत कर लग गए। एक काका गोलू दाखियां दा नशा करदा सी होस्टल तो कढ़ता उन्हूं ओहदे ते भूल पगा गया एक। नहीं अपनी मारी जाने हो मेरी भी सुनो। मैं डंगर डॉक्टर के बेनती करूंगा आप पशुआ नु थोड़ा जा छिकू पा के रखन।
2: आहो भी पहला इन डंगरां चु पूरा ताही पोस्टी गाऊगा

मुसीबत बारे अफ्रीका दी कहावत है कि जदो चूहा अग वल भजदा है ता इसदा मतलब है ओ अग तो भी गर्म चीज तो दूर भज रहा है।

0: लोको आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा अगेता चाड़ पछेती सथरी।
1: इस अखाण दा भाव ए है कि फसल अगेती अते समय सिर बीजण ते चंगा चाड़ दिंदी है। पछेती बीजी फसल तो बहुत कट चाड़ प्राप्त हुंदा है।
0: मुहावे अते अखाण साड़ी अमीर सभ्यता दिया निशानियां। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
2: कावां रोली दे हजूम च संवाद होवे ता चंगाई, अपनी गल कहन दा अपनी गल सुनन दा एहो ता है संवाद। गल्लां अणगौलियां क्यों रहन, जज्बे अपने मिट्टी दी खुशबू लैन सदा, ए ख्वाहिशां ए परवाज एहो ता है दिल वाली गल। शनिचरवार ते ऐतवार अमनदीप सिंह सिद्धू हुणा दे संग पंजाब पंजाबी अते पंजाबी अते रंग सुनदे रहो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

करदा छड़े दा वेड़ा तन तन नी ओदा सारा दिन चित परचाई रखना नी असी कोठे ते स्पीकर हां कोठे ते स्पीकर लाई रखना नी असी कोठे ते। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मिंटू तुरी पंजाब तो पंजाबी तक आवाज पहुंचाने वाला पंजाबी मां बोली की सेवा करने वाला हरमन रेडियो मेरे वालों बड़िया सारिया मुबारक जी। सुनते रहो हरमन रेडियो।

0: भी चलो काम से सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
1: अपनी बिजनेस दी तरक्की ले तुसे भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस दी एड देन ले जां किसे भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन ले संपर्क करो। अकाउंट्स एट harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन
3: हरमन रेडियो।

पैसे बारे फ्रांस की एक कहावत अनुसार उधार दे के तुसी उस बंदे दी जायदाद खराब कर देंदे हो। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। भुखा मरे तां की ना करे।
1: इस अखाण दा भाव स्पष्ट है कि भुख बंदे कोलों खटिया तों खटिया कम भी करवा लैंदी है।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले पंजाबी बोले हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
2: सांझ ख्यालां ते सोचां दी सांझ, खुशियां ते गमां दी सांझ, हकीकतां ते सुपनियां दी सांझ, दिलां ते रूहां दी सांझ, गीतां ते गल्लां दी सांझ, साडी ते तुहाडी सांझ, तां फिर पाओ ते वधाओ ए सांझ। प्रोग्राम सांझ सिर्फ हरमन रेडियो ते।

हरमन रेडियो सुन रहे सारे पंजाबियों नूं तुहाडे अपने गुरप्रीत घुग्गी वालों बहुत बहुत निघी प्यार भरी सत श्री अकाल और मैं हरमन रेडियो दे सारे स्टाफ नूं प्रेजेंटर्स नूं एंकर्स नूं अपना प्यार भी भेजदा और सल्यूट भी करदा तुहाडी मेहनत नूं तुहाडी इस लगन नूं तुहाडे इस लगाव नूं कि देर से मेहनत निष्ठा दे नाल तुसीं पंजाब पंजाबी और पंजाबीयत नूं प्रमोट कर रहे हो सिडनी दे विच बह के परमात्मा करे कि तुहाडा इह हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तो बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दे विच उस तो कुल दुनिया दे विच हरमन प्यारा होवे तुहाडा इह हरमन रेडियो सो एक बार फिर मेरियां ढेर सारियां शुभकामनावां दुआवां तुहाडे नाल।

0: जमाने बदल गए, अंदाज बदल गए, कुछ तो है जो आज भी ठहरिया होया, जिदे नाल मैनू रोजाना समय दर समय महसूस हुंदा है अपनापन, पुराने गीतां दी खुशबू, सत्थां दी महक, जिंदगी दा जशन, खूबसूरत कविता, जेठ दियां रुत्तां, सौण दे छराटे, पतझड़ दे एहसास, कुछ तां है जो महसूस हुंदा है। भुलियां विसरियां कहानियां, वेड़ियां दी सांझ, तारियां नाल सजिया होया अंबरां दा थाल, वाडी दा मौसम, झोनियां दी ढोलां ते पैंदी थाप, बोर्ड ते पूलियां दे उत्ते बिस्तरा विछा राखी करना, कुछ तां है जो अजे भी बाकी है। रावी दे पानी, सतलुज दी महक, प्रभात दी पानी, तरकाला दी रहरास, रात दियां बातां, कुछ ता है जो आज भी गुनगुना लईदा। ए अपनापन, ए सांझ, विदेशां च बैठे मेरे वर्गे लई, मेरियां यादां च पंजाब अज भी ज्योंदा त्यों है। बेशक तत्तियां हवावां कालियां रातां हनेर करती भी है, पर कुछ ता है जो अज भी मेरा, मेरे होण दा, मेरे तक पहुंचदा है। सत्थां दी सांझी आवाज, हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।

युद्ध बारे अफ्रीका वाले कहंदे हन कि युद्ध दा पहला शिकार सच हुंदा है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

अपर मिडिल क्लास श्रेणी लई बस इको दलेराना काम बाकी बचिया है, ओ है ब्याह करवाना। सुने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा अगे पिछे चंगी दिन दिहार मंदी।
1: जदों नित विहार दा कम सही चलदा चलदा किसे दिन दिहार ते विगड़ जावे उदों इंज आखदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
2: ओ आखे कमजोर कहानी दिल वाली, मैं आखा मुंह जोर कहानी दिल वाली। ओ आखे की सुपने अंदर रखे आए, मैं आखा चल टोर कहानी दिल वाली। पावे प्रीत पुरानी ही हो जावे, पावे प्रीत पुरानी भी हो जावे, पर रहंदी नवी नकोर कहानी दिल वाली।

कुलदीप मानक, मोहम्मद सदीक, रणजीत कौर, मोहम्मद रफी, शिंदा, दिलशाद अते होर चोटी दे पंजाबी गायकां दे हिट गीत रोज दुपहरे 12 तो 1 बजे सिडनी समय अनुसार हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया ते। अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

एक अफ्रीकी कहावत अनुसार मिट्टी नाल लिबड़े खंभा वाले कुकर नू मजाक ना करो, हो सकता है वो लड़ाई जीत के आया होवे। चंगे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: हो गया अपना खासम। थैंक यू, लव यू ऑल।
1: मेरे वीरो, भैनो, बच्चियों, बुजुर्गो, भाभी हो, देशां विदेशां बसदे सारे पंजाबी हो, प्यारे पेंडू शहरी शादी शुदा छड़े ते कुआरे हो, झगड़े छड़ के दो मिनट हसो।
2: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है, जे चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
3: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
2: रुक दे फट्टा
4: जी, तो मैं पता लग गया रोडवेज की बस विच तुसी कंडक्टर सी, पर तुसी आ गल नहीं दस रहे कि थोड़ी बस का ड्राइवर कौन सी।
5: मेरी बस का ड्राइवर हुंदा जी फुफड़ गालड़ी।
6: गल्लां करो।
5: एक बारी ही चंडीगढ़ रोड ते बस लेके जांदे पे।
4: अच्छा।
5: ते कोलों दी एक कुड़ी स्कूटरी लेके लंघी। तेनू पता अजकल हॉर्न भी तरह तरह दे लगे हुए।
4: आहो।
5: ओ कुड़ी ने जदों हॉर्न बजाया ते विचों आवाज आई
4: ना, फिर फुफड़ की कहिंदा,
6: गल सुन कुड़िए, हुण कन्नी कांटा लगा है, पहले अकल नु हाथ पाना थी, जे तेन कंधिया तो इना डर लगता ते घरों चप्पल पा के आना थी।
5: एक बारी फुफड़ गालड़ी दे मुंडे दे ब्याह दे दिन बनन लगे।
4: अच्छा।
5: जदों दिन बनन लगे ते बचोला फुफड़ गालड़ी नु पता की कहना,
4: की
5: कहना, जा भी फुफड़ा जाके भाई जरा लिया।
4: फिर फुफड़ की कहना,
6: चलिया मैं तेरे कथों मारना, 9 बजे कहना भाईचारा लिया, हूं ते दुकाना भी बंद हो गई हूं, मैं भाईचारा कितों लियावां।
5: इस गल करके फुफड़ गालड़ी दे मुंडे दा रिश्ता टूट गया।
4: ओहो।
5: सारा टब्बर मैं क्या फुफड़ गालड़ी तो बड़ा दुखी है।
4: अच्छा।
5: ते फुफड़ गालड़ी दी घर वाली नूं पता की कहंदी,
4: की
6: बे मर जाणिया, तू सानू किथे जोगा नहीं छड्डिया, बे रिश्ता हुंदा हुंदा टूट गया, बे मैं ते तो बड़ी दुखी हां, जे तू मर भी गया ते मैं तेरे मंजे दे नेड़े नहीं आना।
4: ना फिर फुफड़ गालड़ी की कहिंदा,
6: जे तू मेरे मंजे दे नेड़े आई ते मैं तेनू लत मार के परां भी छट देना। गल्लां करो
7: हरमन रेडियो
8: 24 घंटे 7 दिन।

0: नवे हिट भी सुनो, याद करो पुराने गीत। हरमन रेडियो हिट गीतां दी मशीन।
1: चल चलिए एक दुनिया बनाइए, विच होण खुशियां दे रंग, गल्लां करिए दिल वालियां, भाईचारे दे संग। सोच परवाज नवा आगाज ते दिल मिलियां दे साज, सुनिए सुनाइए सांझी एक आवाज। ऑस्ट्रेलिया दा 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाला पहला पंजाबी रेडियो, ट्रूली योर्स।

रब बारे इजराइल दी कहावत है कि जे रब धरती ते रहंदा हुंदा तां लोकां ने उस दे कर दियां बारियां तोड़ देनियां सन। विद्या विचारी तां पर उपकारी

0: तो सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा गुरदास संधू हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दिल पंजाबी जज्बात पंजाबी
1: मान मोहम्मद सदीक रणजीत कौर मोहम्मद रफी छिंदा दिलशाद अते होर छोटी दे पंजाबी गायकां दे हिट गीत रोज दोपहरे 12 तो 1 बजे सिडनी समय अनुसार हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसीं।

0: सिडनी समय दोपहर नू इस घंटे विच तुसी सुन रहे हो एक पुराना अते एक नवा हिट गीत।
1: आस्ट्रेलिया आगे ईस्टर दे क्रिसमस जो गई रह गए, अपने त्योहारा नू भी याद रखो। सुनो हरमन रेडियो नू ते जुड़ो अपने विसे नाल।

0: पैसे बारे चीन दी एक कहावत अनुसार पैसे दा चलकारा अन्ने नु भी देखन ला दिंदा है। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।
1: Again and again and again, the lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win.

0: तभी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
1: रोटी हजम नहीं होंगी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल की वरतों वाली कणक जेडी की सीधी खेतों चो मिल च लिया जाती, ऑस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डू वाली स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसलों की दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन डॉट कॉम डॉट एयू या फोन करो 04288955564।
2: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ, इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे। लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती, नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा, लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 04044000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो, हरमन रेडियो।

0: डोक में
1: चट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जे चंडा गाड़ के बदमाशी करना है गा।
2: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
3: वैसे यार एक गल है, कनेडा अमरीका दा अपने देश नालो दिन रात दा फर्क है।
4: वो तो है ही, जदो अपने मुल्क च दिन हुंदा है कनेडा अमरीका च रात हुंदी है।
3: ओ नहीं, मेरा मतलब है खान पीन ते रहनी सहनी च बहुत फर्क है, जानी सब कुछ उल्टा है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, उधले मुल्कां च 65 साल तो उपरली उम्र दे बंदे दा ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लैंदे ने ते नवां लाइसेंस नहीं बनाउंदे। ओ कहंदे कि 65 साल तो उपरले बंदे दी जजमेंट सही नहीं रहिंदी ते इस करके ओ गड्डी नहीं चला सकदा। ते अपने मुल्क च 65 साल तो उपरले गड्डी दी गल तां इक पासे, एडा वड्डा मुल्क चलाई जांदे आ, जजमेंट दी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आउंदी। उधरले मुल्क च जे कोई कल्ला बंदा कार ले जांदा होवे, कार खराब हो जाए ते उधरों पुलिस दी कार आ जाए तां बंदे दे साह च साह आ जांदा है कि चलो हुण फिक्र करन दी लोड़ नहीं, ए मेरी हैल्प कर देणगे। ते इधर जे पुलिस दी जिप्सी आ जाए बंदे दा रंग उड जांदा है कि एक तां पहली बिपता पई हुई सी उत्तों ए आ गई। खाण पीण वालीआं चीजां च वी फर्क है। पहली गल तां उधर कोई खाण पीण वाली चीज बनाउण वेले अणगहली हुंदी नहीं, जे कोई इदां दी प्रॉब्लम आ जाए तां दुकानदार घर आ के लिखती रूप च माफी मंगदा है ते पैसे वापस करके जांदा है। ते अपने मुल्क च कल परसों मैं रसगुल्ले लिआया 50 रुपया दे, आके घर देखिया तां इक रसगुल्ले चो दो मरिया हुई मक्खियां निकलियां। मैं दुकानदार कोल शिकायत कीती
3: ते फिर उन्हें माफी मंग ली होनी है।
4: माफी कहनू मंग ली? ओ कहंदा पैसे भाई साहब तुहाथों सिर्फ रसगुल्लिआं दे लैने, मक्खियां दे नहीं लए। उधरले मुल्कां च लोकां दी रहनी सहनी बड़ी उच्ची है, लोग बड़े वधिया वधिया कपड़े पा के रखते ने ते बड़े वधिया वधिया घरां दे विच रहिंदे ने। ते अपने मुल्क च पिंडां दे विच जट जमीनां लई जांदे ने, घर नहीं पाउंदे। साडे पिंड दा इक मुंडा अपनी भूआ कोल गया, उहदा फुफड़ शाम नूं दसण लग गया, कहिंदा काका आपां ने आह 10 किले न्याई वाले भी लै ले 35 लख दे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆ ਨਿਆਈ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੜਾਇਓ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਚ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੈ।
3: ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਆ?
4: ਇੱਧਰ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸੁੱਚ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬੱਲਬ ਜਗਦਾ, ਉਧਰ ਸੁੱਚ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬੱਲਬ ਜਗਦਾ। ਇੱਧਰ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚ ਬੱਚਾ ਰੇੜੀ ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮੇਮ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਂਹ ਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ।
3: ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਬਾਂਹ ਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੇ ਆ?
4: ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਹੀ ਆਊਗੀ।
5: ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਮੇਡੀ ਆਵਰ।

0: महाराज ने तू आप घर क्यों इना कट किया होया सी?
1: ओ कठ ता कीता सी भी तेनो पता संतिए लोका नो भी इस चीज का हुण पता लग गया भी लीडरां ने वोटां लेके मुड़ के 5 साल इन्हां ने मुंह नहीं दिखाउणा।
0: आहो
1: असीं सोचिया भी पिंड पिंड जाके घर घर जाके लोकां दे नाल दुख सुख दे विच भाईवाल बणीए, उन्हां दीआं सानूं दुख तकलीफां दा पता लगे।
0: आहो तदे वोटां मिलण गईआं।
1: हुण ज्यादा लीडरां दा काम ए आ भी हरेक पिंड दे विच जाके पहला इह पता करदे भी पिंड दे विच किहदे मर्ग होई आ उहदे भोग ते जरूर जाण, ते जे किते ब्याह शादी आ ते उहदे जाके शगन जरूर दे के आउणा।
0: अच्छा
1: इस तरह ही संतिए सी इक पिंड च वग गए भी चल किसे मरे होए दा पता करिए उहदे अफसोस कर चली। पिंड च किते सत्थ च बैठे 5-4 बंदे संतिए ताश खेडी जांदे।
0: अच्छा
1: ते मैं जानती है उन्होंने पूछा भाई इत्थे किसी दे मर्ग हुई है ता सानू दसो असि अफसोस करना है।
0: अच्छा
1: शांति उन्हें चुक बैठा टिचरी जी अमली बोल पिया।
0: की कहिंदा?
1: कहिंदा जी हजे खड़ जाओ 4 दिन ताकि थोनू बार बार ना गेड़ा मारना पवे, जदो 5-7 हो गए थोनू कट्ठा ही दस देंगे।

0: शर्मा जी वेखदे की हो जो शुरू।
1: भतीज आ थैले च केड़ा लकोया हथियार?
2: चाचा जी हथियार सी और कोई नहीं, ए तां तुहानू स्रोतियां ते दर्शकां ने खत पाए ने बड़ियां उम्मीदां नाल।
1: भाई कमाल आ, मोबाइल फोन ते नेट युग विच भी चिट्ठियां दी भरमार।
0: सीधे सीधे सवालां दे जवाब दे दियो, एवें गल ना जाइयो टाल।
1: अच्छा ए गल आ, फिर पढ़ो पहली चिट्ठी, चादर से जमा तैयार।
2: चाचा जी पहला खत बठिंडे तो लिखदे रशपाल सिंह पाली, ए पुछदे ने चाचा जी की कहिंदा तुहाडा तजर्बा, ऐतकी पावर च केड़ी सरकार आऊगी, कांग्रेसी जां अकाली?
1: गल सुन लो रशपाल पाली जी, सरकारी खजाना भावे भरिया होवे भावे खाली जी, ढाइयां दे पुत्तां ने तां घा ही खोतना, उन्हां दा कीने बनना वाली जी। जिथों तक सरकारां दा सवाल आ, दोहां ने आके इको जी गाउणी कवाली जी। ओए पुत्रा तैनू तां मूंगी ओही 70 रुपए किलो मिलनी आ, भावे कांग्रेसी आउण भावे काली जी। तो पाली जी ए सियासत ते कैसी गुजी ते डूंगी कहानी, जेड़ी ना तू जानी ते ना मैं जानी, इथे डड्डां पता लगन दंदियां केड़े वेले पी जांदियां ने पानी। हां पर पंजाब दा पिछला इतिहास ए जरूर दसदा कि सरकार भावे सोने दी बन के रही होवे, पर पंजाबियां ने लगातार दो वारी नहीं पड़ाया किसे नू पानी।
0: चाचा जी मेनू लगदा कोई तीजी धिर अगे ना आ जावे, क्योंकि एना दी तां हुण उलझ गई लगदी है ताणी।
1: ओ बीबा चाहे सारा पिंड मर जावे, पर तू एक गल पल्ले वाला के तेरे हिस्से लंबड़दारी नहीं आउणी।
0: की मतलब?
1: ओ मतलब ए के कुंडियां दे सिंग फस गए, हुण कोई नित्रू बड़े वे खाणी।

0: चाचा जी दूजी चिट्ठी आई है किसी बीबी दी।
1: इधर फड़ा मेरी लगदी है।
0: उम्र 60 साल है।
1: फिर तू ही पढ़ के सुना तेरी लगदी है।
0: लिखण वाली है बीबी मीनू, पिंड दा नाम रशीन है, ते डाकखाना छपार है, ते उम्र 21 साल है।
2: कहंदी की आ?
0: कहंदी है कि रात नू नींद ना आवे, दिन नू चैन ना आवे, कि चाचा जी इसे दा नाम प्यार है।
1: ओए बीबी मीनू जी, प्यार प्यूर कोई नहीं, एवी भुलेखे च ना रहो, बिगली बड़ा सारिया दा यही हाल है।
2: चाचा जी कदे चंगे कमां दी शलाघा करनी भी सिखो, सरकार ने पिंडां वाले भी बिजली मुफ्त करती, कुछ एदे बारे भी मुंह फुट्टो।
1: ओए फेर की आ, जे मुफ्त करती है सरकार दा फर्ज आ। नाले कमलिया, जेड़ी चीज है ही नहीं ओनू मुफ्त कहण च की हर्ज आ।

0: और मोबाइल भी मैं दस दिन दे, मेरा नंबर हैगा 98140 29 67।
1: ठीक है, अब आप बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है।
0: और मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है और तुसी मैंने मसाज भेजा सी।
1: देखिए उसे मसाज नहीं, उसे मैसेज कहते हैं।
0: वो कुछ भी कहते हैं, मेरे को इतना गाना भी नहीं आया तो मेरा 6.25 रुपया भी कट हो गया। तुसी दसो मेरा 6.25 रुपया किथे गया।
1: देखिए आप गुस्सा मत हुए, अगर आपके पास हमारा गाना नहीं पहुँचा है तो हम आपको ये गाना भेज देते हैं।
0: वो तुसी हाथ ना जोड़ो, तुसी मेरा 6.25 रुपया मोड़ो, मैं आपे मन जाना।
1: देखिए आप नाराज मत होइए, हम आपको ये गाना भेज देते हैं।
0: पैंजी मायने दिल सुटना, मैं ते अपना मोबाइल सुटन फिर दी, तुसी मेरा 6.25 रुपया सुटो।
1: सर आपकी कोई भी बात हमारी समझ में नहीं पड़ रही, आप ऐसे कीजिए किसी और से हमारी बात करवाइए।
0: कडवाना मैं तुम्हारी और किसी न गल, जब तुसी मेरा 6.25 रुपया नहीं सुटना हैगा तो पोटू शाह ने तुहानू कूटना हैगा। कोई नहीं, मैं हुनी जाट दा नंबर मलाउंदी हैगा, सीधा तुहाडे नाल गल कराउंदी हैगा।
2: हॉस्टेस टीला।

0: नहीं बचदे हुण ते नहीं बचदे।
1: हरमन रेडियो, रेडियो कमाल बा कमाल।

0: के धूप में फसो।
1: चट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
0: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
2: ओदा घुगी साहब जिथे घटिया पद्धर दा गाउण वाले मां बोली दे नाल इना अत्याचार करन डए ने उथे कुछ चंगे गाउण वाले ने पंजाबी मां बोली दा सिर फखर नाल उच्चा भी कीता है।
3: ते होर थोड़े फखर दी गल है कि अज देश दे हर कोने च हर सूबे च साडे पंजाबी गीतां नूं बड़े प्यार नाल लोक सुणदे। एक दिन मैं अपने यार पप्पू दी कैसटां वाली दुकान ते बैठा।
2: अच्छा
3: उथे एक बिहारी वीर साडा भैया ओह आया ते आके उहनूं आके कहिंदा पप्पू नूं बाबू ए खामखा वो कैसट तो देना। कहिंदा केड़ी कैसट बाबू का नाम तो हम भूल गए का भाव का नाम मोहन वारिस का कैसट।
2: अच्छा
3: कहिंदा मनमोहन वारिस दी बड़िया कैसटां ने तेनू केड़ी चाहिए। बाबू का नाम हमका दिमाग में नहीं आ रहा ऊ मैं गाने वाले को कौनो सांस लेने में परेशानी है।
2: अच्छा
3: कहिंदा वो मित्रां दा सार रुकदा। हाँ बाबू है मित्रां दी सार रुकदा।
4: कॉमेडी आवर गीत ते हास्य।

0: आर्मन रेडियो 24/7।
1: जहाँ ना गूंजे किलकारियां इनकी, वहां तो पौधे भी हरे नहीं होते। खुदा की सगी होती हैं बेटियां, दिल देना और खरीद लेना। इनके सौदे नहीं होते, इनके सौदे नहीं होते।

0: हाथ अड्डे रह जाने अमीरी उड जानी, मिट्टी सी मिट्टी है अखीरी उड जानी।
1: थोड़ा समा रुको, हसन लई हरमन रेडियो लेके आया है, कॉमेडी आवर, गीत ते हासे ते हासे।
2: जुगनू जी कापी पेन लाए के बड़ा सीरियस होके बैठे हो, की लिख रहे हो? अच्छा अच्छा समझ गया, अगली कैसेट दा मसाला लिख रहे हो?
3: ओ कैसेट दा मसाला नहीं, मैं इस दुनिया तो तंग आके रब नू एक चिट्ठी लिख रहे।
2: रब नू चिट्ठी?
3: हाँ।
2: अच्छा फिर मेनू भी सुनाओ तुसी रब नू की लिखया।
3: मैं लिखया है, प्यारे रब जी सत श्री अकाल, मैं धरती ते बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, ते उम्मीद करदा तुसी भी परलोक च ठीक होंगे। बाकी साडे देश ते तां रब जी तुहाडी पहले ही बहुत कृपा है, क्योंकि हरेक बंदा कहिंदा कि इंडिया दा कम तां रब सारे ही चलदा है। रब जी मेरी तुहाडे नाल इक शिकायत है कि अजकल इंसानां दे जिहड़े तुसी स्पेयर पार्ट्स लाउंदे हो बड़े घटिया किस्म दे हुंदे ने। अखां छेती बदल जांदियां ने, कोई हत्थ कम करके राजी नहीं, गोड्यां दे जोड़ छेती जवाब दे जांदे ने, दिल बेईमान ने ते नीतां माड़ियां ने। रब जी तुहानूं याद होऊगा कि बहुत चिर पहलां तुसी जदों किसे इंसान नूं धरती ते भेजदे सी तां उहदे च ज़मीर नां दा इक पुरजा फिट करदे सी जिहदे उत्ते लिखिया हुंदा सी नॉट फॉर सेल। पर अजकल पहली गल तां तुसी उह पुरजा लाउंदे ही नहीं, जे लाउंदे वी हों तां धरती ते बहुत सस्ता विक जांदा। बाकी रब जी तुसी जाणी जाणो, धरती ते लोकां ने थोड़े नां ते बहुत दुकानां खोल रखियां ने ते बिना किसे कॉपीराइट दे थोड़ा नां बेच रहे ने। गुस्सा ना करियो रब जी, हुण थोड़ा पहलां वाला दबदबा नहीं रहा, लोक उत्थों बिल्कुल डरनों हट गए, बस हुण तां किसे ना किसे ट्रक दे पिछे लिखिया हुंदा रब कोलों डर सज्जणा। इत्थे लोक चंगे काम दा सिहरा अपने सिर लै लैंदे ने ते हर माड़े काम दी जिम्मेवारी इह कह के थोड़े ते सुट दिंदे ने कि रब नूं इही मंजूर सी। थोड़े उमर खाते च भी कपड़े हुंदे ने, क्योंकि थोड़ा उमर मंत्री सिफारशी बंदियां दी म्याज 10-10 साल दा वादा कर दिंदा है ते आम जनता नूं 20-20 साल पहले ही रिटायर कर दिंदा। जे हो सके तां इंडिया नूं पब्लिक दी सप्लाई थोड़ी जी घटाओ, क्योंकि माल
4: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ, इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती, नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा, लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
5: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलता गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी कि सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी, आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
6: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस दी ऐड देण लई जां किसे भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
7: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो
8: 24 घंटे 24 घंटे 7 दिन। हरमन रेडियो माफी चाहने हां कि अज असी इस घंटे दा खबरां दा बुलेटिन तकनीकी कारणा करके पेश नहीं कर सके।

सुनोते सुनाओ अर्बन रेडियो। रब बारे ये दीश दी कहावत है कि जे रब धरती उपर रहंदा हुंदा ता लोका ने उस दे घर दियां बारियां पन देनियां सन,

सुनो भी दोस्तों, भावे बैठे हुए हो जा खड़े हुए हो, घर वाली नाल रसे हुए हो जा फिर बापू नाल लड़े हुए हो, काम ते जा रहे हो जा फिर काम तो घर वापस आ रहे हो, ओ भाई नहा रहे हो के कुछ खा रहे हो जा फिर घर विच रौला रप्पा पा रहे ने न्याणे, ओ भाई दुखी ना होवो, सब गल्ला छड्डो आ सुनो हरमा रेडियो तो गाने। तुसी दोस्तो चाहे पिंडा विच बसदे हो जां फिर बसदे हो पिछे शहरां, हरमा रेडियो सदा मंगदा तुहाडियां खैरां।

0: 24/7।
1: सेहत बारे आइलैंड वाले कहंदे हन कि रज के हसना ते रज के सोना ए दो इलाज डाक्टर दी किताब च सब तो वधिया दसे गए हन। विद्या विचारी तां पर उपकारी। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई तुसी साडे नाल संपर्क कर सकते हो।
1: अरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
2: परमिंदर सोडी दी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे विचों 2 कहावतां पेश ने। एक कहावत अनुसार शहर दी पूछ बनन नालों पिंड दा सिर होना चंगा हुंदा है, और चीनी कहावत अनुसार हड़ तो बचण लई शेर दी पूछ नहीं फड़ लेनी चाहीदी। सुने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

0: अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी
1: औतर नखत्तर ना मोली ना पत्तर।
2: इस अखाण राही संतानहीन बंदियां दी मंदी समाजिक अवस्था दा वर्णन कीता गया है। उना दे संतानहीन होण कारण उना दी कुल दा वाधा नहीं हुंदा।

0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। गुड़ दित्या मरे ता मोहरा क्यों देईए।
1: जद कोई कम मिठे टंग नाल कीता जा सकदा होवे ता अगले नू औखियां करके ओ कम लैण दी की लोड।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: 24 घंटे
1: किसी पुरानी प्रसिद्धि नूं विरासत विच कबूल करना विविधता मुल लेना हुंदा है। रविंद्रनाथ टैगोर। सोने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो।

0: What's happening in music, culture, community events?
1: Harman Radio
0: brings you the best from UK, Canada, USA, and India.
2: This is a special, something completely different.
0: What's happening in music?
3: Smashing comedy.
4: कौन है भाई सवेरे सवेरे
5: सारे असि भी कोई कच्चियां गोलियां नहीं खेडियां
6: जरा वो कंजर बाहर आया ओदी संग कर लो
7: कैन आई गो नाउ
8: Harman Radio.

0: खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com.
1: रोटी हजम नहीं होंगी वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स का गरेवाल चक्की आटा ताजा घट केमिकल की वरतों वाली कणक जेडी के सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो. आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआ लई स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बदाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन. वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428-895-564.
2: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो. आजो ताया जी वेलकम. ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू. ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ. इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे. लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो. पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर. जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू. मंजे धार्मिक फोटोआं चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथो मिलू. ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती. नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा. ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा. लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा. लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन. आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते. वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au. नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture.
3: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकदे हो. हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देन लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो.
4: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे.
5: माफी चाहुंदे हां कि अज असी इस घंटे दा खबरां दा बुलेटिन तकनीकी कारणां करके पेश नहीं कर सके.

गीत लोली वालों ताई सुखप्रीत लई गाया गया क्योंकि ताई सुखप्रीत ताई दे ज्यादा क्लोज आ भरावा मेरे क्लोज कर करके ना कान ऐदा भर दे पिंड दे भी जेदा करके आन नहीं दिंदा जेदा करके रफड़ पे कई पै रफड़ चलो कोई गल नहीं नॉट एट ऑल असल गल ए पिंड दे भले लई बहुत कुछ सुनना पैंदा पिंड दे भले लई कि आप दे भले लई या बकवास ना कर चपेड़ा ना खाली मेरा पुत्र वे मिलकीत मिलकीत ओ शेर बगे ओ काका मिलकीत वे ना कर भाई ना कर मिलकीत ना कर बबरी खेरा तो लो भाई ताया जी इधर प्रोग्राम दे विच आए ने हरविंदर भाजी मोगे वाले कहिंदे सत श्री अकाल ताया बिशन सिंह ताजपुरिया मनदीवीर मलकीत मीतू ते समूह ताजपुर ते समूह हरमा रेडियो दे परिवार नू सत श्री अकाल आज भाई हरविंदर सिंह जी हरबिंदर सिंह जी आजो जी आजो जी आजो बाबा जी जी सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल बुलाउंदे ने सत श्री अकाल पाजी उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होवोंगे मैं कहा जी चढ़दी गला हरबिंदर सिंह जी होरां दी ते जय जयकार ही आ ते परम जोसन साहब सत श्री अकाल बुलाउंदे ने सत श्री अकाल सत श्री अकाल सत श्री अकाल भाई आ जाओ जोसन साहब नू कल गाना सुनाता ही कि नहीं बुद्धो सुनाता सी ता जी ते भाई नागेंद्र सिंह जी अज आए कि नहीं अज उन्हां नू कहो अज तुहाडा दिन ही आ भाई कल असीं आपदा दिन लै लिया लै कदा लिया भाई साहब जी तो बाद च आए नहीं हुणे नहीं अज आए नी ता जी आए आ जी लिया भाई फिर गल करिए आ उन्हां दसने आ वाहेगुरु जपदे ही सब कार्ज ते मन खुश हो जांदा प्यारे ओ ताया जी आपा भी आ गए ते श्रोतियां नूं भी बुलाउने आपा सत श्री अकाल सत श्री अकाल भाई साहब जी साडे वल्लों भी जिवें नमाणे दा फोन नंबर गैब कीता है जी ऐ कल वाला सुनेहा भी तुसीं किते गैब कर दिता कल वाला सुनेहा लभो ते पढ़ो ताया जी मनदीप जी एवें ना मनजीप जी ते एवें ना लड़ो दे ते सुनेहा ही गैब करदा ते लड़ना ही आ भाई नगेंद्र सिंह जी कल तुहाडा कोई सुनेहा नहीं आया जी ते इस करके मैनु लगदा कि आया सी सुनेहा नहीं आया ताया जी नहीं 5 तरीक दा आया 6 तरीक दा तो कोई सुनेहा नहीं आया मैनु लगदा भाजी होरां नूं भुलेखा पिया जां फिर उहनां दी ईमेल साडे तक पहुंची नहीं ते तुसीं इक वारी चैक कर लिओ नगेंद्र सिंह जी भेजी होणी उहनां ने तुहानूं नहीं मिलदी पछी लग जाए मिलकीत ओ मिलकीत बेला स्नेह तुसी भाई साहब जी दे पढ़दे नहीं इस गलों तुसी कच्चे आ ते कच्चिया तो भी कच्चे आ हर जो बज लो जे बज हुंदा ते भाई साहब जी तुहानूं असीं लालचा ने यमराइया अड्डा च सुनाउणा अज जेड़ा लालचा ने यमराइया अड्डा रिकॉर्ड ओ सुनाउणा जेड़ा तुसी बड़ा पसंद करदे ए केड़ा पसंद करदे सुनदे ने ओ जेड़ा अपना की मारा मलकीत ओ केड़ा सी ओ पूर्ण भगत दा किस्सा सुनाओ भाई साहब।

ले भी सुनिया राजे दी बेटी गीत जेड़ा सुनिया मैनू लगदा वे भाई नाग इंदर सिंह जी होरां ने जेड़ा गाना सुनिया बहजा बहजा तो हो गई होनी कहते बहजा बहजा हो गई इनी हजे तो नची गिदे विच जाने की तां जी रविंदर भाजी कहंदे ने गाना सुनना जी अमर शौंकी दा आजा भाभी झूठ लै वाह भाई वाह पिंग हलारे रही आय हाय भाई साहब जी आज दुख तोड़ूगा मैं लगता गाना गुरजिंदर भाजी कहते सत श्री अकाल ताज जी मनदीप जी मतलब की आ जा भाई ग्यारह अंदर आ जा तेरी चाह डीकते हैं सैट एक कप चाह का प्रोग्राम सुन रहे हैं जी कहते कि हाल चाल नहीं दी ते सासे स्टोरी कहते जी थोड़ी स्टोरी वधिया सी स्टोरी तो भाई साहब ली सुनाई है क्यों वो नहीं सुन सकते इन्हे सुन सकते वो हम पता उन्होंने केड़ा कना चुंगला ले लेनी है सुन सकते उन्होंने तो है ही मलकीत मलकीत ओ शेर बगया या उड़िया या बुद्ध स्टोरी चंगी सी ते स्टोरी सिखे आली चंगी ते चलो ये तुहाडा प्यार सत्कार साडे हर एक चंगी या माड़ी चीज भी मतलब चंगा समझते साडे लिए माण आली गल बहुत बेहतरीन भगवान दियां गल्लां आपां सुनाउणियां भाई ले भाई साहब साडे बहुत पूजण योग ने कहंदे ने प्यारियो कल सुनेहा पाया सी ताए जी मैनूं लगदा कि उन्होंने सुनेहा जिहड़ा पाया सी तो भाई साहब अपना मिलिया नहीं उहदे लई माफी भी चाहुंदे आपां आ नहीं चलो कोई नहीं कल सुनेहा पाया सी ते समझ गए गल तुहाडी फिर मतलब कोशिश तो साडी इह है वी सुनेहे तुहाडे भाई साहब जी ना भी आए हुण तां वी पढ़ दईए पर हुण कल काकिआं नूं मिलदे सी मैं तां पुछदा रहा असीं कहे कल खरे प्यार मुहब्बत आले नगमे चले शर्मा गए हुणे शर्मा गए हुणे शर्मा जांदा बंदा भाई सियाणा बंदा को गल करे ते मैनू चेता आ गया एक गल बंदा ही शर्मा ही जांदा आहो इहदी सुखप्रीत दी नौं ते इहदा उहदा परौणा इहदा इहदा पुत यानी ए दोवें बैठे एको थाली चू रोटी खाई जान अच्छा मैं शर्मा गया वो रोटी खाना ही होना शर्मा जाते भाई साड़िया बुढ़िया दे कह लो भी ये बंदा इतने रोटी खाना ना दो कमरे छड़ के रोटी खानी है वेख्या ही नहीं कठे रोटियां खाने सानू तो शर्मा ही जानी ये शर्मा ही गई कोई नहीं साडे लिए भी शर्म वाली है तुहाडे लिए तो बड़िया बड़िया गल्लां भी शर्म वालियां नहीं होनगियां सौरा उथे बैठा सास उथे बैठी पत्यौरा उथे बैठा पत्यौरा केड़ा ओ भरावा सौरे दा भरा पत्यौरा ही हुंदा लोली दा भरा लगदा होवां ना लगदा होवां दूरों नेड़ों ओत लगदा ही आ पत्यौरा ही समझ लो पत्यौरा की तुहानूं तो सौरा भी समझ लैण ते कोई फर्क नहीं या चपेड़ा ना खा उन्हां खरे पत्यौरा भी समझना कि नहीं अच्छा ओ सामने बैठे रोटी खान ते फिर दौड़ियो फड़े मु फिर फिर तो तेरे अर्गे जेड़े बाले मॉडर्न बन दे ये मैं लगता फटे चुका मिल गए सभ्याचार के सभ्याचार का हाल अगे बुरा होया अगे बुढ़िया घुंड कर लेंदिया सी मेरा सौरा बैठा पत्यौरा बैठा ताया जी हुण घुंड दा जमाना नहीं जमाना चलो घुंड दा नहीं तो रोटी दे अड कर लैण उत्तों कट्ठे खाना तो प्यार वादा रोज छितरो छितरी हुंदे प्यार खड़े गादा वादा मैं सुखप्रीत नूं इह गल दा कहा मैं मैनू नहीं बुरी मैनू नहीं चंगी लगी गल चलो उदा तुहाडे घर दा मसला तुसीं भावें दालां डोल डोल खाओ मैनू नहीं पर ओह कहिंदा कहिंदी इह नौं साडी ने इह यूट्यूब ते किसे पंडित दा बाहमण दी इंटरव्यू सुन ली वो कहिंदी भी पति ते पत्नी कट्ठा खाना खाणगे ते पति तो पैसे नहीं मुकणे मैं गल भी पंडित फड़ो जेड़ा इदा दी पुठियां स्कीमां दसदा पता मैनू फेर लगा भी ये चक्कर जेड़ा ना पंडितां दी डराई होई खांदी है मैं ते क्या ओहदे ते झूठ खाण नूं चेत नहीं करदा इह कदां खाई जांगी चलो सभ्याचार इक पासे बंदे ते फिर भी खान नूं भी जी करना चाहीदा किसे दे बंदे दा झूठी चीज नूं बंदा दसदा भी आहदी झूठी कितें मिल जाए उहनूं वेख के बंदा कहिंदा भी इदों तां मौत कबूल ही है
के एहो जा केड़ा ता जेदी जूठी खान नु जी करदा वी एदी जूठी मिल जदी मेरे तो ना को पुछ तू आप दे को दस ए जिथे बंदे दा प्यार होवे ओदा बंदा जूठा पा लवे एदा किते जूठा मिल जाए ओ गल्लां तुहाडे समझो बाहर आ ते ओ भी तो प्यार कर दी अपने पति नु ओ प्यार कदा कर दी ओ माया जेड़ी कहिंदा ना वामन कहिंदा वी माया आउणी आ बस ओदी बदौलती ओदी कौड़ा कौट भरी फिरदी आ ते वैसे झूठ ता है जी खान ना प्यार भी तो वधदा ना पैसा वधन लगे प्यार कहिंदा तो फिर तो कदे भी ना खांदी प्यार वधा के लेना की आ प्यार वधा के लेना प्यार भी तो है जरूरी आ आहो तुहाडे लई हो जरूरी उन्हां लई तो पैसा जरूरी आ सा पुत क्योंकि जेड़े पीढ़ी है ना अज दी उन्होंने शौक बहुत उन्होंने मतलब तमन्नावां बालियां ने बालियां तमन्नावां बाला पैसा मंगदियां ते बाला पैसा जां ते फिर बाली मेहनत करो ता दौना जी ते जां फिर इदां दे ढगवान जी लभो जे ना कोई रोटी खान ना कोई लतां कुटन ना कोई सैर कुटन ना कोई किसे तरीके दे नाल जो भी हुंदा बाजरे दियां रोटियां पाउण ना काले कुत्ते नूं रोटी पाउण ना गऊशाला दे विच चारा भेजण ना जो भी जिदां दा भी हुंदा फिर बंदा ओह बणाउंदा इह कम सौखा ही मेहनत आला कम औखा क्योंकि मेहनत किसे ने करनी नहीं आ सौखा वा भी पठे चके ते गां नूं पाते रोटी फड़ी ते काले कुत्ते नूं पाती ते इदां दियां चीजां ज्यादा करके कोई ते इहदा कोई फर्क ते नहीं पैंदा होणा फर्क तो वो गां नूं वहां पै जाए जिन्हें खाने है दो थोड़ा बहुत दुध वध दे दूंगी कुत्ता भी ठीक है माड़ा मोटा धन्नवाद कर दू तेरा भी मैं कल दी रोटी नहीं खाधी तू रोटी पाती जानवरां नाल तो वैसे प्यार ही करना चाहिए इस करके थोड़ा करना भी सानू पैसा आवे साडे आ होवे साडे ओ होवे जानवरां नाल तो वैसे ही प्यार करना ही चाहिए क्योंकि ये भी भाई जूना भोगण डए ने इन्हां नूं हमदर्दी दी लोड़ आ जी सही गलत है जी वैसे चलो भाई साहब जी का पसंदीदा नगमा ला के हूं जाइ ले लिए आप मिलगी ओना रज के खाना ही ना कीती ना कमाई जेडे कमाई करनगे रज के ओ खानगे आ पंडता दे तांत्रिका दे एदा दे ब्राह्मणा दे डिके जेड़ा चढ़ गया ना जेड़ा कोला पैहा ओ भी जांदा लगू या किसी बीबी बहुत पढ़ी लिखी बड़े तगड़े घर दी ओना ने ओदे घर आला ते ए दोवें पंडता दे चक्करां च पै गया ओ पंडित सोहरा पता नहीं किदां दा ही किदां दा नहीं ओ जेड़ी बीबी सी बड़ी तगड़े घर दी सी ओ बाबे दा किते दिल बीबी ते आ गया जां बाबे दी नीत जेड़ी आ माड़ी हो गई अच्छा बाबा ओदे अल बेखदा बुखदा रहा बीबी भी गां मैनू पता ही है ते ओ तगड़े घर दी सी ओ बाबे नाल ओदी कोई गल अटपट हो गई गल सीधी हो गई प्यार मोहब्बत पै गया आया तो अपा करन सी तो अपा करके लै गया जेड़ा कोई पिछे छड गया ओ परौना ओदा ही छड गया तो ओ घर आली पजा के लै गया ओदी तगड़े घर आली बेली बोली छड के ओ पंडित ना रहन लग पी ओदे नाल यानी प्यार दा बुखार पुत थोड़ा चिर ही रहिंदा हुंदा ए बंदे नूं चंगा चंगा उदों ही लगदा हुंदा जदों ओह मिलिया ना होवे जदों ओहनूं टकरिया ना होवे जदों ओहदियां आदतां जदों ओहदियां खूबियां जिन्हां च भेत ना पिया होवे उहनां च किते बंदा लगदा वी इहदे वर्गा को बंदा ही नहीं जिदां जिदां ओहदा पता लग जांदा उदां उदां ओह मनूं लिथी जांदा उहने वेख्या वी इह जिहड़ा पंडित जी है तांत्रिक जी है जो भी है इह तां उहीं किसे जोगा ही नहीं गल्लां करदा सौ आ ते इहदे मतलब कह ला वी ओह चो इक वी नहीं पगाउण वाला किथे मैं राजां च रहिंदी सी महिलां च रहिंदी सी इक चीज कहो दस आउंदियां सी किते दस कहो ते इक वी नहीं लैके दिंदा गल्लां आईयां रेड़ी जांदा ओह फिर लांबे मीणे मूणे बहु दित्ते ओह कहिंदी तू है की आ जो इक वार पता नहीं इहदे उहने पद मारिया कहिंदी लै तेरे पले हाज कोहा ओहनू जलील ही इन्ना करता ना ओह तांत्रिक जिहा भी ओ ओनू गुस्सा चांद कहिंदा मैं मर जां जां मैं इहनू मार देना ओ तुसी नंग वां तुसी नीद इदां वां तुसी
फलाने जातां दे पातां दे बहुत टीका टिप्पणी की थी, तुसीं भुख नांगा मंगे खाना ने। उन चढ़ गुस्सा गया, सुते पई दा गल नप के साले मारती। अच्छा ये झूठियां गल्लां कोलों नहीं बनाउण डिया, ये गूगल च कढ के वेख लो इंटरनेट च आ। मार के उन्हें ना अपना जिहड़ा विहड़ा सी उहदे च टोआ पट के रातों राती नप दित्ती। नप के तो उत्ते फुल लाते, बूटे लाते, बूटे लाते ते उत्थे मतलब ओदी मतलब कवर ही बनाती जी। ते रौला पाता आले दुआले मेरे घर आले मैनूं छड के चले गई आ, पहला बच के गई आ, हुण मेरे तो भी छड के किसी होर तो बच गई आ। उन्हां नूं आने उन्हां नूं पता भी कलेश दे नाल रहिंदा, छड भी गई होगी, किसी ने पुछया नहीं दस्या नहीं। करदे कराउंदे ऐदां ही उत्थे ओह नाच गाने गाए फलाना डिमगड़ा, पता लगदा लगदा लग गया भी इहने मारी आ। उहने जदों वाहवा कुटिया मारिया उहने दस भी दित्ता भी इत्थे नप्पी आ, नप्पी पट्टी ओहदी लाश भी रही गली छड़ी दी निकली। उहनू जेल चले वी हुण भी ओह जेल कट्टण डिया, हुण भी ओह यूट्यूब ते कढ के वेख ली, हुण भी ओह जेल कट्टण डिया। एदां भी जिहड़ा बंदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੂ ਜਾਂ ਇਹ ਖਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਾਹਲੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਜੀ। ਲੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਮਿਟਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀ ਖਾਣਾ। ये गीत हुण तुहानू सुना रहा, कल नू मिलांगे। अपना ख्याल रखो जी, रब रखो।

0: कई सब कुछ इथो मिलू ताई जी लिया तू मेरी टेंशन दूर करती नाले तेरी ताई कहती सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेट दा ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन अकाल कर लियो ताया जी 0404-000536 ते वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture
1: रोटी हजम नहीं हुंदी वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स दा गरेवाल चक्की आटा ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी कि सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआं लई स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428-895-564
2: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दीआं सेवावां हासिल कर सकदे हो हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी ऐड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो
3: मुआफी चाहुंदे हां कि अज असी इस घंटे दा खबरां दा बुलेटिन तकनीकी कारणां करके

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे सत्ते दिन।
2: बीत नाम दी पैसे बारे एक कहावत है, आदमी नालों पैसे नू कदे भी ज्यादा इज्जत नहीं देनी चाहिदी। लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे, चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7।
2: युद्ध बारे सियाने कहंदे हन कि जेड़ा युद्ध लई काली करदा है उसनू ए नहीं पता हुंदा कि युद्ध मौत दा वसीला हुंदी है।

रुझेवे बारे तुर्की वाले कहते हैं कि लद्दया खोता हिणकना भुल जाता है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: हर प्रोग्राम दी जानकारी, रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर। ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradioaustralia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo। वधेरे जानकारी लई विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।
1: ले आ फिर भीम प्लासी ला।

0: ब्लेसिंग इन द हाउस हाउस हाउस
1: हरमन रेडियो रेडियो कमाल बा कमाल।
0: पिता तो बिना बच्चा अता यतीम हुंदा है। जे पिता होवे पर मां ना होवे तो दोवे यतीम हुंदे हन।

0: Armin Radio
1: 24/7.
2: इशारे बारे अफगानिस्तान की कहावत है कि मैं गल्लां तां दरवाजे नाल कर रहा हां पर सुना कंधां नूं रहा हां। सुने विचारां लई सुनदे रहो।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे 7 दिन
2: हेठा मसीत उत्ते ठाकर दवारा दो अणटुकवियां गल्लां दे मेल नू वेख के ए अखाण अक्सर वर्त्या जांदा है।

0: आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा सबे पेड़ा मूह कालियां।
1: इस दा मतलब है कि इथे सारे दे सारे बंदे ही भैड़े हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: सुनोते सुनाओ अर्बन रेडियो।
1: एक मशहूर अरबी कहावत अनुसार जे बिल्ली चूहे फड़ सकती होवे तो उसके काली जा चिट्टी होने नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। चंगे विचारां ले जुड़े रहो अर्बन रेडियो दे नाल।

0: बिंगो ओ आजो आजो ताया जी वेलकम ताया आज रात साडे कोल ही रहना बहुत थोनू ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे लो ताया आपां ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो पंजाबी फर्नीचर जी हाँ पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी थानू चाहिदा सब इथों मिलू मंजे धार्मिक फोटोआं चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ इथों मिलू ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा ओनू वाला फिगर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन अकाल कर लियो ताया जी 0404-000536 ते वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture
1: रोटी हजम नहीं हुंदी वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलता गरेवाल चक्की आटा ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेडी के सिद्धी खेतां चो मिल च लई जांदी ऑस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआं लई स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

आओ। गुरु प्यारियो, सिडनी समय अनुसार शाम दे 5 बज चुके ने, ता आओ दुनिया भर विच वास्ते पंजाबियां दे हरमन प्यारे हरमन रेडियो दी मार्फत सरवण करदे हां श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब तों बख्शिश होए अज दे हुक्मनामे दी कथा विचार।

जग गुरु नानक धन गुरु नानक साहब जी दे पावन पुत्र बोल आपां विचारन लगे आ सोठ राग विच महाराज कृपा कर दे। हे प्रभु हे परमात्मा जी तुसी दाते हो तुसी बख्शणहार हो और सारिआं नूं बख्शदे हो। तू प्रभ दाता दान मत पूरा सारे जीवां नूं दान दिंदे हो रिजक दा। आ शरीर जिहड़ा मिलिया इह वी दान विच आ सवास दान विच मिलिया। फिर दान दिंदिआं उह मत दा पूरा आ। आदमी दान करदा ना ते दान देण वाले नूं कहिंदा मेरे लागे खलो इक फोटो करा ला क्योंकि मैं दानी आ तू मंगता आ क्योंकि अंदर मत काम नहीं करदी। पर तू प्रभदाता दान मत पूरा। हे परमेश्वर जीओ तुसी सारिआं दे दाते हो दान देण विच पूरे हो किते ऊणता ही नहीं। हुण बंदा जो दान करदा ना अपना बैलेंस वेख के दान करदा कि इन्ना क धन आ इन्ना क मैं जग लावा इन्ना क वंड दवा इन्ना क मैं बचा के रखा वो दान कीता हुआ वंडिया हुआ घट जांदा। पर जिहड़ा मालक दान करदा ना दद्दा दाता एक है सबको देवन हार देंदे तोट ना आवई अगणत भरे भंडार। कदे सागर विच्चों कप्पा प्यालियां दे नाल जल नहीं घटदा। जिहड़ा मिनती दा पानी होवे ओह घट सकदा क्योंकि मालक दे घर बेशुमार धन आ। हम थारे पेखारी जीओ जग्यासु बेनती करदा दाता जी तुसी दानी हो असी मंगते आ असी गुरु घर मंगण आए आ। कई बार हैरानगी हो जाती आ कि बंदा अपना कीता कि दान ते अपना पत्थर पढ़दा कि मेरा लिखिया किते नहीं। वो दरगाह दे विच लिखिया गया पत्थरां नूं ना वेख तू शब्द दा पुजारी आ शब्द वल चात पा। हम थारे भेखारी जीओ थारे जिहड़े आ ना अंबाले इलाके दी बोली आ असी सारे कहिंदे आ ते उत्थे थारे बोलदे आ असी सारे मालक दे भिखारी आ। हम पेखक भेखारी तेरे तू निजपत है दाता। ओ परमेश्वर दाता असी मंगते हां मालक दे करो परमेश्वर दे कोलो ना।

प्रभु परमात्मा दयाल हो जे के सिखा तू मेरे दर्शन कर लिया निहाल हो गया हुण दस की मंगदा क्योंकि धन चाहिदा रिजक चाहिदा बाण प्रतिष्ठा चाहिदी आ पर सिख अपने वालों कहिंदा मैं क्या मांगो किस थिर ना रहाई कि मैं मंगा की मैनू दिसदा कुछ नहीं आ कि इत्थे रहण वाला कुछ नहीं आ कि जिहड़ा आपां मंग रहे आ ना इह साडियां मंगा नहीं सी अरदास आपां बड़े गौ नाल सुणदे आ अरदास विच सत मंगा आ पर करमा भागा वाली जिहड़ी पवित्र रूह होवे उह किते उह दान मंगदी होवेगी आपां बड़ा मुश्किल आ सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान आपां किन्ने क गुरमुख प्यारे होवांगे कि जिन्हां ने विवेक दा दान मंगिया होवेगा कि दाता मेरे घर सुचमताई होवे मेरे घर दी पाक सोई पवित्र होवे कि अमृत वेले मैं उठ के देग तैयार करां और देग तैयार करके अरदास करके दाता तेन भोग लावा किन्निया कने मंगिया क्योंकि अरदासा बाहर दिया पर मंगना की मैं क्या मांगो किस थिर ना रहाई हर दीजै नाम प्यारी जियो हे दाता जी जे कृपा कर लगे अन सब तो महंगी प्यारी दात मेनू नाम दी दात दियो विण प्रभ होर जे विणत होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देहे नाम संतोखिया उतरै।

सारे संसार बाग दा माली ओ वाहिगुरु परमेश्वर कटा कटा विच कटा कटा खिरदियां विच चौ खालियां विच सारियां दे

फिर वाहिगुरु परमेश्वर का वासा किथे किथे आ जल तरल थावां ते थल खुशक थावां ते महल सारे थावां ते मही धरती ते अल आकाश जल थल मही अल पूरिया स्वामी सिरजनहार। कोई जगह एहो जी नहीं जिथे परमात्मा ना होवे। जरा जरा में उसका जहूर है, अगर तुझको नजर ना आवे तो किसका कसूर है। परमेश्वर ते कण कण दे विच आ जल थल मही अल पूरिया वो सारिया थावां ते आ, क्योंकि सारी जगह ते सारे समया विच पर गुप्तो वरता है। माफ करना जिथे महाराज जी का प्रकाश होवे ना, जिन्ने आपां प्रताख रूप विच बैठे आ ना ते साडे तो ज्यादिया शहीदी रूहां दे पैरे आ। हुण आपां जिन्ने भी आए आ, कोई अंदरूनी तौर ते अंदरों किसे नूं गुरु रामदास महाराज दे दर्शन होए होणगे, असीं बाहरों ते बड़े कीते आ, क्योंकि अंदरों जुड़न दा जतन करिए। हर दीजा क्योंकि वह वाहिगुरु परमेश्वर गुर शब्दी देख निहारी जीओ, जिन्ना ने गुरु दे दर्शन किते, गुरु दे शब्द नूं सुनिया मन्निया ते गुरु दे शब्दी कमाई नाल निहारी जीओ, उन्हां नूं निहाल करता। उन्हां नूं इस थले वाली तह तो महाराज ने उच्ची

जदों गुरु कृपा धारण करदा ना किसी सिख ते, ओ गुरु के प्यारे हुए पानी विच मरत मात लोक प्याल पानी विच आकाश ते सारे थावां ते परमेश्वर नूं वेख लैंदा। भगतां ने वतन कीते जिन्हां ने तकिया, सबै कट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे। उन्हां ने तकिया के जल जल पानी वाले जीवां विच वी परमेश्वर आ, थल धरती ते खुशक थावां ते वी आ, आकाश उड़दे परंदियां विच वी मालक आ। पर गुरु के प्यारो किसे विरले दे उत्ते कृपा हुई, गुरु कृपा सदका।

ओ परमेश्वर ब्रह्म अजोनी जूना तो रहत। ब्रह्म अजोनी है, गुरु के प्यारो आज भी है, पी अगले समय विच भी होवेगा। ओ आद सच, जुगाद सच है, पी सच नानक होसी पी सच। असी पहला नहीं सी, आज मौजूद आ, कल नाम काल दा, कल असी नहीं होवांगे, पर परमेश्वर दा घर ते मालक दी गल बात इसे तरह होवेगी। काट देख काट पीतर देख मरारी जीओ, पीतर सारियां दे विच मुर आरी, सारियां दे विच ओ वाहिगुरु परमेश्वर।

जन्म मरण दे गेड़ विच आ हुण कई बार सानू भुलेखा हुंदा कि जो मर्जी करो मैं ते आया मुक्तिया नहीं। जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पया दे सलमै। आपां पता जग बपड़ा बेचारा जन्म मरण दे गेड़ विच आ हुण कई बार सानू भुलेखा हुंदा कि जो मर्जी करो मैं ते आया मुक्तिया नहीं। जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पया दे सलमै। आपां

ते महाराज ने होर भी वचन किते, कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक अंकार। परमेश्वर जन्म मरण तो रहत आ, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत समल खोई। असी नाश्ता वल जा रहे हां, पर ओ परमेश्वर नाश तो रहत आ। जन्म मरण को यो जग बपड़ो, ये जगत विचारा जिन्ने भी जीव आए हैं, अज जवानी आ कल बुढ़ेपा आने का डर आ, अज सुख आ कल नूं बंदा सुकने पिया के कदे मंजे ते ना पवा, अज शहनशाह आ कल मंगता ना बना। क्यों आ इन दूजे भगत विसारी जीओ, असी तमाम जीवां ने इधर ला के दवैत विच ला के को हन्ने दी को बन्ने दी को पहाड़ा वाले रन्ने दी ढोल टमाका सरबरदा। मैं ते कई बार हैरान होईदा, क्योंकि जदों ते ऐतवार आ गुरु घर आपां सुखमणी साहिब पढ़दे आ, सुखमणी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विसराम, ते जदों मुड़दे आ कहिंदे अज आनंद आ गया। ओ आनंद रहा एक दिन, मंगलवार आया, मंगलवारे ले माहीत असी पंडित अगे बैठे आ, साडा भविख दस, तेरा भविख गुरु रामदास महाराज दे कोल आ। अजे बुधवार दा दिन गया, ते वीरवार नूं गुरु के प्यारे आपां मट्टां दे पुजारी आ, ये अपने किथे पैर लगदे आ, क्योंकि शनिवार नूं गुरु घरां विच भी कई वार पाइया क तेल ते शटांकी मां थोड़े जे किल चढ़दे आ, ये गुरु के प्यारो शनिश्चर देवते दा पाज, ये आपां लोग करी जांदे आ, पर आपां रुकांगे किथे। महाराज कहिंदे इन दूजे भगत विसारी जीओ, क्योंकि रब दी भगती विसार दित्ती आ, द्वैत पाव

जे गुरु की कृपा नाल उस सतगुरु वाहिगुरु परमेश्वर की सानू मत मिल जे ना ते साकत बाजी खारी जीओ। गुरु कृपा करे गुरमत प्राप्त हो जावे ते सीधे राह ते चलांगे। ते जे साकत पुणा कठोर चेतिया ते जीवन की बाजी नू खार जावांगे। गुरु के प्यारो इतिहास पढ़ के वेख लो, इस हिंदुस्तान की धरती ते बाबर भी आया, वो जुल्म करके अन्याय करके अपने जीवन की बाजी नू हार गया। इस धरती ते गुरु बाबा गुरु नानक साहब भी आए, लुकाई का भला करके दुनिया नू तार गए। जो गुरु के प्यारे बाबे फरीद साहब की रसना का प्यार बचार दुनिया का भला कर गया, वो रंगे की तलवार नहीं कर सकी, वह जुल्म करदा मर गया। क्योंकि गुरु की मत होवे ते गुरु का भय होवेगा। साकत बाजी खारी जीओ, साकत पुणे नाल कठोर चित नाल, जदों परवाह नहीं करदे फिर मनुखे जन्म की बाजी नू हार जांदे आ। आपां बाजी हारनी नहीं, किसे नू भी पुछो ना भाई किधरों आया की हाल आ, कहिंदा बस टाइम पास हुंदा। टाइम पास ते पशु भी करदा, पंछी भी करदा, एक जवारिया भी करदा, एक ताड़वी भी करदा। तू टाइम पास नहीं गुरु कर करना आया। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साधा। महाराज कहिंदे तू यात्रा सफली करनी आ, क्योंकि तू यात्रा ते निकलिया। क्योंकि यात्रा दो तीन तरह दी आ, एक गुरु के प्यारियो एक मनुख दी यात्रा सारी उम्र धन दी यात्रा, एक गुरमुख प्यारे दी यात्रा आ तनवाण दी के मां मालक नू पाउणा। गुरु के प्यारियो एक संसार दी यात्रा एक निरंकार दी यात्रा। इस करके रावां दा फर्क आ, क्योंकि दो राह आ, एक भगवान दे घर नू ते एक शैतान दे घर नू। जे गुरु दी मत लवांगे पै होवेगा ते अपने आप उड़ांगे, ते जे मन मर्जी करांगे ते गुरु दी परवाह नहीं करांगे। फिर महाराज कहिंदे सागत पुणे नाल

सतगुरु ही कृपा करे ना ते सिख दे जन्म मरण दे बंधन टुटदे आ, क्योंकि बंधन कई तरह दे आ। जे परिवार दी भी रुकावट बनदी आ ना, नाम जपन लग्या गुरु घर आउण लग्या ते इक बंधन आ। इह गुरबाणी दा अटल फैसला, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अर नार। जे बच्चियां दी घरवाली दी दुकान दी प्रॉपर्टी दी रुकावट बनदी ते महाराज कहिंदे तेरे पैरां विच संगल वज्जे आ। इन्हां बंधना तों रहत होणा ते सतगुरु बंधन तोड़ नरारे, गुरु ही बंधन तोड़न वाला ते बहुड़ना गर्व मझारी जीओ। फिर जदों गुरु बंधन कटदा ना, बौर दुबारा गर्भ मात गर्भ मझारी विच नहीं आया जांदा। आपां सुखमनी साहब पढ़दे आ, जदों 18वें श्लोक ते जांदे आ ना, ते सिख कुछ मंगदा नहीं, बस हाथ जोड़ के गुरु अर्जन देव महाराज दे अगे सी चुका के बैठा ते गुरु आप फिर बख्शिश करता जी। गुरु ने उसे अगे अष्टपदी दे अगे कृपा कीती आ। सतगुर सेकी करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। सतगुर सेकी दुरमत मल खिरै, गुर बचनी हर नाम उतरै। सतगुर सेके बंधन काटै, गुर का सिख बकार ते हटै। सतगुर सेको नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी खे। सतगुर सेका हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सेको जी नाल सुमारै। जिदा मां बच्चे नूं अपनी छाती नाल ला के पालदी आ ना, ते गुरु अपने सिख नूं अपने गले ला के उहदे बंधन कटदा आ। माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जल नहाए। सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। मां दी प्रीत आ कि मैं पाटियां लीरां पा लवांगी, भुखी सौ जावांगी, पर मेरा पुत भुखा ना सौवे। जेड़ा सिख बाणी पढ़दा गुरु दी प्रीत आ कि मैं सिख नूं झौपड़ी च नहीं रहण दिंदा, सिख नूं बहुत वड्डे सुख दवांगा, आनंद प्रसन्न कर देंगा। ते गुरु जन्म मरण दे गे

0: अखीरली पंक्ति विच कृपा करदे है कि जिन्हां दे खिरदे विच ज्ञान रूपी रतन यह लाल परमेशर दा परमेशर दे नाम नूं हीरा भी किया किते लाल भी आउंदा जिन्हां दे अंदर प्रकाश हो गया चानण हो गया वह दोबारा जमदे मरदे नहीं आउण आण दे चक्कर तो रहत तो जांदे आ ऐसी सतगुरु महाराज उन्हां दे कृपा करदे आ। आओ हुण रल मिल के जो लड़ीवार कथा आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी आ रही है क्योंकि अज दा जो शब्द आ मारू सोलहे बाड़ी आ ते 1074 अंग ते पावन शब्द दर्ज आ। पंजवें पातशाह महाराज ने कृपा कीती आ कई बार आपां सुते सुते कह दिंदे आ मारू सोले सोले नहीं हुंदे 16 गिणती आ पर ये महाराज दी अपनी मौज आ क्योंकि बहुते शब्द 16 भी आए आ जिहड़ा अज दा शब्द उचारण आ ना ये 9 पदे ही आए 9 ही पंक्तियां आउंदियां क्योंकि महाराज दी अपनी मौज आ किते 15 भी आउंदियां 17 भी ते किते 21 शब्द भी आउंदे आ ये सतगुरां दी अपनी मौज आ। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कृपा कर लगे आ। आओ कागर सहित आपां सरवण करिए जी
1: मारो।

0: धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज मारू राग द्वारा ये 16 पदियां भाव इहदी गिणती ते सरलेख 16 आ पर शब्द 9 पदे आए 9 पदियां वाली बाणी आ ते महाराज दी अपनी मौज आ ते मारू राग गुरु ग्रंथ साहिब च 21वां राग आ क्योंकि नंबर ते राग आउंदा तीसरे पैर गाउण दा हदायत आ ते सतगुरु महाराज कृपा करदे आ पहला उस करते वाहिगुरु परमेश्वर दा मंगल उचारण करदे आ एक ओंकार सतगुरु प्रसाद परमेश्वर एक है अद्वितीय स्वरूप आ सचित निंदा ते देश काल वस्तु प्रसिद्ध आ ओ सारे थावां ते सारे समयां विच एक दे ए सारा ही पसारा पसारिया ओंकार सारे ब्रह्मांड दा प्रकाश रूप आ उस दी प्राप्ति सतगुर दी प्रसाद कृपा बख्श नाल हुंदी आ। आप जी दी ज्ञात वास्ते 2 मिनट लवां इह जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब च 4 प्रकार दे महाराज ने मंगल उचारण कीते आ इक आपां मंगल पढ़दे आ इक ओंकार तों लै के ए गुरु के प्यारे गुर प्रसाद तक ए 33 वार मंगल गुरु ग्रंथ साहिब च आउंदा ए मंगल वड्डा 33 वारा एक मंगल पढ़दे आ एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद ए 9 वारी मंगल महाराज ने उच्चारण किया गुरु ग्रंथ साहिब च। एक तीसरा मंगल आ एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद ए 2 वारा कृपा हुई आ एक वारा 81 अंग ते एक वारा 544 अंग ते इह जिहड़ा मंगल आ इस मंगल दी महाराज ने बार बार वरतों कीती आ एक ओंकार सतगुर प्रसाद ए गुरु के प्यारो 524 वार दे करीब उच्चारण कीता 568 वारा महाराज ने मंगल उच्चारण कीता आ। जदों प्रकरण वरतदे आ राग बदलदे आ सतगुरां दी मौज आ क्योंकि भगतां दी बाणी विच वी सतगुरां ने ए बख्शिश कर दित्ती आ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो गुरु 5वें पातशाह कृपा कर रहे हैं
1: गुर गोपाल गुर गोविंदा।
0: ओ गुरु वाहिगुरु परमेश्वरी गोपाल सृष्टि दा पालनहार है ते गुरु ही गोविंदा गोविंदा करके जानिया जाण वाला विंद नाम रखिया करन वाला है क्योंकि साडे शरीर दा मालक ओ वाहिगुरु परमेश्वर है।
1: गुर दयाल सदा बख्शिंदा।
0: ओ गुरु दयालता दे घर विच है असी कलजुगी जी बार बार गुनाह करदे ते गुरु बख्शदा है क्योंकि आपां इक वारा नहीं बहुत वारा भलावड़े भुली भुल भुल पछोताणी ए जीव रूपी स्त्री पता नहीं किन्नी क वारा भुल भुल के मात लोक ते आई ते गुरु साहब ने साडे फिर गुनाह बख्शे आ। बड़े सुंदर वचन आउंदे आ जैसा बालक भाई सिपाही लख अपराध कमावै कर उपदेश झिड़के बहु भाती बौड़ पिता गल लावै पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावै। ए मां प्यो एडे दयालता वाले आ जे दुनियावी बख्शदे आ ना ते परमात्मा किड्डा बख्शंद होवेगा। भगत कबीर साहब ने वचन कीता कि हे परमेश्वर हे भगवान कृपा कर सुत अपराध करत है जेते जननी चीत ना राख चेते राम अय्या हो बारक तेरा काहे ना खंड सबगण मेरा। जे मां ने जन्म दे के मैनू बख्शिया मैनू पालिया जवान कीता ए दाता जे मैं भुलिया ते मैनू

हुण गुरु दा शब्द ही छे शास्त्र सताई सिमरतियां खट करमा छे प्रकार दे करम क्योंकि गुरु दे शब्द विच ही निरजतन ए सारे सुख प्राप्त हो जांदे आ ते गुरु ही सारे थावां ते अस्थानां विच सुभाई मान्या गुरु।

0: सिमरन करनाल जाद विच जोड़नाल मन निर्मल मैर तो रहत हुंदा पवित्र हो जांदा है। ते गुरु ही सिख दे अपमान नरादरी वाले जिहड़े निखेद कर्म आ प्राश्चित कर्म माड़े आ इन्हां नूं कढ दिंदा है।
1: गुर का सेवक नरक ना जाए।
0: गुरु दा सेवक गुरु दा प्यारा कदे नरकां विच नहीं जांदा। ये कबीर साहब ने अलानिया बयान कीता कबीर सुरग नरक ते मैं रहो सतगुर कै प्रसाद चरण कमल की मौज मैं रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज मैं कह कैसे उन्मान कैबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। कबीर साहब कहिंदे मैनू पता किन्ना आनंद आ ते मैं इन्हां नरकां स्वर्गां तो डरदा नहीं क्योंकि गुरु का सिख नरकां स्वर्गां दा पांदी नहीं। गुरु के सिख ने सिमरन करके सचखंड दे विच प्रवेश करना। क्या नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान न करते अपने गुर प्रसादे गुर का सेवक नरक ना जाए काढ़ी नरक ते तू। महाराज कहिंदे अपना सिख पछाण के कढ लवांगे। गुरु का सिख इधर नू नहीं जाना।

0: गुरु के सेवक का निजम आके साध संगत कर ली, संगत विच आके अपने फुरने रोकने मन नू साधना। गुरु का सिख जदो गुरु कृपा करदा ते सानू जीवा नू नाम दा दान दिंदा, भगती दा दान, सेवा सिमरन दा दान दिंदा, इस संगत विचो लाह मिलदा है।
1: गुरुद्वारा हर कीर्तन सुनिया।
0: हुण महाराज किड्डा सोहना वचन कर दे, हे भाई जे गुरु घर आए ते बैठ के कीर्तन सुनिए, क्योंकि शामा नू वेखदे आ गुरु के प्यारो आपो अपने मोबाइलां ते फोटो खिंच रहे लोग, ए गुरु के प्यारो घर फोटोआं वाला नहीं, अपने अंदर दी फोटो वेख के अंदर की भरिया। इस करके गुरु दे दर्शन करन आया किदे तू तस्वीरां लाउण नहीं आया, इत्थे फोटोग्राफरी नहीं करनी, इत्थे गुरु चरणा विच झुक जा। की करना है, गुरुद्वारा हर कीर्तन सुणिया। ये गुरुद्वारे पाठ कई बार गुरबाणी विच आउंदा, एक आपां सुणदे आ गुरुद्वारा हर कीर्तन सुणिया, गुरुद्वारा लाए भावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया, गुरुद्वारे खोए सोझी पाए सी। गुरुद्वारे एक गुरु दा द्वारा, ए नहीं कि कई बार आपां गुरुद्वारा कहिंदे, गुरुद्वारा नहीं हुंदा, गुरुद्वारा गुरु दा घर। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुणिए, इत्थे बैठ

0: गुरु तेरे करो कला कला लड़ाई तेरे करो जड़ा पंजा वकारा दा खिरदे विच कलेश आ इनू मिटा देवेगा ते गुरु दे घर आके इन्ना मान सत्कार मिलदा सच्चे मार्ग चलदे आ उस्ताद करे जहान। गुरु के प्यारो हे दरगह देवै माना हे गुरु ते दरगाह विच वी मान सत्कार कराउण वाला वचन पढ़दे आ ना रेरे दरगह कहे न को आओ बैठ आदर सुभ देव उन्हां दी सोभा जुग जुग होई कोई न मिटण हारा भावे सौ पढ़दे पाओ रुकावट बन जो गुरु अपने प्यारियां नूं माण वडियाई दिवांदा है।
1: आगम अगोचर गुरु दिखाया
0: ओ जो परमेश्वर अगम मन दी गमता तो रहत अगोचर इंदिया दी विषय पकड़ तो रहत या सतगुरु ने ए भेद दिखाया है।
1: भूला मार्ग सतगुर पाया
0: जड़ा सिख पहला भुलिया भड़किया सी गुरु ने सीधे मार्ग ते पा दिता भूले सिख गुरु समझाए उजड़ जांदे मार्ग पाए कुराए पए।

0: है।
1: गुरु के सेवक नु महाराज ने परिपूर्ण भक्ति नाल जोड़िया, कदे उन्हां दी भक्ति बंदगी विच कदे को बिघन नहीं पैंदा, बिघन ना को लागता हर पै अरदास। क्योंकि संत करतार सिंह जी खालसा महापुरुष क्या करदे सी कि गुरु के सिख ने नेतने भी करना ते अरदास करके रंभ करे, ए ना होवे कि कदे ख्याल इधर कदे उतरा चढ़ाव। सो गुरु के सिख नु भगती विच किसे प्रकार

0: वाहिगुरु परमेश्वर ओच उच्ची सुरत वाले ऊन पर ढिले मठियां उच्चियां नीवियां दे विच एक समान वरत रहा पर मन करके उहदे मालक दे चरणा नाल ध्यान जोड़ ध्यान मालक दे चरणा विच कौणा कर
1: गुर मिलिया सब त्रिसन बुझाई
0: गुरु नूं मिलिया सिख दी आसा मासा पूरी हुंदी तृष्णा।

0: परम तीर्ज विचार शुभ गुणा का खजाना दिता सब तो वड्डी दात नाम दा अमृत पी पाना है गुरु का सिख आ पींदा ते पाना होर ना नि पिउंदा अमृत मृत्यु तो रहत मल कर दे है
1: गुर की बाणी सब माहे सुमाणी
0: गुरु की बाणी जिहड़ा को सुनदा कोई गावे को सुने कोई करे विचार सारिआं विच कर दी सारिआं दी हिरदिआं विच सुमाई।

0: महाराज साहब कहिंदे जिन्ना न जाने जापे तेई सब नेत्रे तेई तो पाव ओ उतर गए जिन्ने में जपया। इत्थे कोई जात बरादरी दी गल नहीं, महाराज ते इन्ने प्यार दे वचन कर दे, कोई जन हरस्यों देवै जोर चरण गहो बको सुबरसना दीजे प्राण कोर। जिन्ना जपी जिन्ना सुनी सारियां दा पार उतारा हो गया।
1: सतगुर की महिमा सतगुर जाणै,
0: सतगुरां दी महिमा परमेश्वर आप ही जानदा। जां करते की मित करता जाणै, कै जाणै गुरसूरा। गुरु सूरमा गुरु दे सेवक जान दे अभ्यासी संत जान।
1: जो किश करे सो आपण पाणा,
0: जो कुछ भी मिलना जो कुछ हो रहा वाहिगुरु परमेश्वर अपने पाणे दी।

विच कृपा करे हे काल पुरख वाहिगुरु साधु धूवर संत जन के तेरे दर ते जाजक तेरे दर ते अरजोइयां कर रहा तेरे करो नाम दी दात मांग रहे सारियां दी चोड़ी पर गुरु कृपा करे अमृत वेले आया हुआ मुख वाक साडी झोली गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने दात पाई आ गुरु भला करे ये सेवा प्रवान होवे सारिया संगतां दा कोटान कोट गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दा समुचे प्रबंध आ सिख साहिबाना दा नाल सेवादारा दा बहुत बहुत धन्यवाद आ जिहड़ी सेवा मिली महाराज की कृपा दे नाल इह समां समाप्त होया भुला चुका दी खिमा आओ दो पंक्तियां पढ़ के गुरु अगे अर्ज करिए जी।

तक तुसी आनंद मान रहे सी मंजी साहिब दीवान हाल अमृतसर साहिब तो ब्रॉडकास्ट हो रही सवेर दे हुक्मनामे दी कथा विचार। असी आस करदे हां कि गुरबाणी दी कथा विचार नाल तुसी अपने हिरदे दियां डुंघाइयां तक जरूर गुड़च होए होवोगे। इसे आस नाल कल फिर मिल बैठांगे इसे समय ते सरवण करांगे कथा विचार। तद तक ली आग्या दियो सत श्री अकाल गुरबर अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तुरकी बाणी सानू गुरु साहबान ने साढ़े ते तरस करके अपनी किरपा द्वारा प्रेम पदार्थ बख्शिया है। जब असी गुरबाणी विचारदे हाँ तो साडिया गुरु साहबां नाल गल्लां हुंदियां हन। गुरु साहबां नाल गल्लां करन दा एक नमाणा जिहा हीला प्रोग्राम गुरबाणी विचार दे तहत हर रोज सुनना शामी हरमन रेडियो ते।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

ओही टोटा नहीं जिथे पंज दरिया वेंदे सन। इस पंजाब दियां सरहदां तों बाहर भी धरती उत्ते कई पंजाब वसदे ने। सो इस पंजाब अते उस पंजाब विचली सांझ नाल तुहानूं रूबरू करावांगे प्रोग्राम सांझ राहीं तुहाडे अपने रेडियो स्टेशन हरमन रेडियो ते। सुनदे रहो अते सांझ।

मुस्कुराहट बारे अमरीका दी कहावत है कि एक मुस्कुराहट हजार शब्दां तों वध कीमती हुंदी है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

रब बारे सियाने कहंदे हन कि जे तुसी रब दे टोल दी ताल तो थिड़क जावोगे तां तुसी जिंदगी दी ताल नू भी गुआ बैठोगे। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

जिन्ना समा तुसी अपनी जिंदगी विचों गलत इंसान नू बाहर करन दा कठोर फैसला नहीं कर लेंदे, उन्ना समा थोड़ी जिंदगी विच कोई सही इंसान आ भी नहीं सकता। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: Harman Radio 24/7.
1: किसी आदमी की आजादी उत्थे खत्म हो जाती है जिथे वो अपने गुआंढियों की मुसीबत का कारण बन लगती है। विचार विलियम फ्रेडरिक। चंगे विचारों ले जुड़े रहो हरमन रेडियो के नाल।

0: अपने बिजनेस की तरक्की ले तुसे भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने ले जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने ले संपर्क करो। अकाउंट साइट harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे सत्ते दिन
2: हरमन रेडियो
3: क्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत सैड गीत पंजाबी शायरी विचार अते पुराना गीत
4: Harman Radio 24/7
5: Sad ya romantic geetan de shaukeen ho

0: Carmen Radio
1: 24/7.
2: मेहमान वारे अरब दी कहावत है कि चंगी खातरदारी करन वाले दा प्राहुणा ही खातरदारी करना सिखदा है। विद्या विचारी ता पर उपकारी।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे सत्ते दिन।
1: मरना मरना हर कोई आखे, मैं भी आखा मरना, ते जिस मरने विच यार नहीं राजी उस मरने दा की करना, ते तुर गए यार मोहब्बतां वाले लै गए नाल हसे, दिल नहीं लगता मोहम्मद बख्शां जाइए केड़े पासे, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, दोपहर तक दिन गया मोहम्मद शाम डुब जाना, ते इदां ते शबरत आईया सारे लोग करानू आए, ओ नहीं आए मोहम्मद बख्शां जेड़े आप हथी दफनाए, ते जीवन जीवन हर कोई आखे मौत खड़ी सिर तेरे, तेरे नालों लख लख सोने खाक अंदर चस दे, मां मरे ते पिके मुक दे, प्यो मरे ते कर वेला शाला, मरन ना वीर किसे दे उजड़ जांदा ए मेला, बाप मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरन ते कंड खाली, मावां बचो मोहम्मद बख्शा।

0: दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी
1: पंजाबी। मेरी मौत नू सुनेहा ना देवो, मैं बन के गठड़ी बैठा हाँ, हिजर तनहाई ते दर्दां दी मैं बुक्कल मारी बैठा हाँ। मेरी मौत नू सुनेहा ला देवो, मैं बन के गठड़ी बैठा हाँ, हिजर तनहाई ते दर्दां दी मैं बुक्कल मारी बैठा हाँ। मेरे हड्डां विच तू रच गई है, जिवें धुखण हवावां हाड़ दियां, मेरी कबर ते आके रो ना पई, मैनू इहो फिकरा मार दियां। हसरत दिल दी पीड़ा सहिंदी, हसरत दिल दी पीड़ा सहिंदी, मैं सहिंदा तेरे विराग नू, दो दुखां दी ठग दी खुशियां जलन ना दवे चिराग नू। हसरत दिल दी पीड़ा सहिंदी, मैं सहिंदा तेरे विराग नू, दो दुखां दी ठग दी खुशियां जलन ना दवे चिराग नू। इश्क दे पेंडे झलणे औखे, इत्थे हिम्मतां हार दियां, मेरी कबर ते आके रो ना पई, मैनू इहो फिकरा मार दियां। पो माग दियां रातां विच घुल गए संघने ख्वाब मेरे, हिजरा साडा तिड़किया शीशा, सुन के सजना जवाब तेरे। पो माग दियां रातां विच घुल गए संघने ख्वाब मेरे, हिजरा साडा तिड़किया शीशा, सुन के सजना जवाब तेरे। नाभियों तिखे नीले होके निगे नेत्र ठार दियां, मेरी कबर ते आके रो ना पई, मैनू इहो फिकरा मार दियां। जे कलियां दे दिल नाजुक ने ते आशक केड़ा पत्थर दे, जे कलियां दे दिल नाजुक ने ते आशक केड़ा पत्थर दे, जख्मी करके नैणा नू दिल सच्चे करके टक्कर दे। लक्की बालन इश्क दा साड़े की रीसा उस फनकार दियां, मेरी कबर ते आके रो ना पई, मैनू एहो फिकरा मार दियां। मेरी कबर ते आके रो ना पई, मैनू एहो फिकरा।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे सत्य।
1: एक समा आया जदों डॉक्टर सुरजीत पात्र होरां दे दिल दा इलाज करन दे लई उन्हां नूं हस्पताल भर्ती होना पिया। उन्हां ने उत्थे कुछ ख्याल लिखे परविंदर सिंह पापा टोईटोई तुहाडे तक लैके हाजर है। खोल दिंदा दिल जे तूं लफ्ज़ां दे विच यारां दे नाल, खोलना ना पैंदा एदां अज औजारां दे नाल। बैठदा ना तेरा दिल दुनिया दियां भारां दे नाल, बैठिया करदा घड़ी जे आके दिलदारां दे नाल। ना महला उच्चियां ना उच्चे मीनारां दे नाल, कौम उच्ची उठदी है उच्चे किरदारां दे नाल। पढ़िया कर ओ पोथियां वी पौण जो सीने नूं ठंड, रतना अपनी साड़िया कर एवें अखबारां दे नाल।

काली दे संबंध विच तीन संसार प्रसिद्ध कहावतां पेश हन। काली मक्खी दुध च जा डिगदी है, लंगड़े होने तो पहला ही लंग नहीं मारने चाहिए। जेड़ा आदमी बच्चा हासिल कर ली बहुत काला हुंदा है, वो किसे गर्भवती नाल ब्याह कर बैठता है। संसार प्रसिद्ध मुहावरे परमिंदर सोडी, चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: स्वर्गो मंच कुछ पक्या करके राजगुरु सुखदेव दा हाथ फड़के तुरिया भगत सिंह अपनी सर जमीन वल मुंह करके। मता देखिए लोकी एक दूजे संग वसदे के नहीं, हासे खेड़े चलदे के नहीं, खुशी पैड़ियां च वगदी के नहीं, कोई देश हित अगे रखदा के नहीं, धरत मेरी ते स्वर्ग वसदा के नहीं। पर की वेख दे बुजुर्ग बच्चे भुखे पानी विलकदे, खेत भी कीटनाशका नाल भरे, जहरीले हुंदे दरिया ते नलके, लोकी हुंदे जांदे जमीरों हलके, दगा लीडरां दे कम्मां चों चलके, सियासी खेड़ा नाल देश नूं लुटके, झूठी रवायतां दा दम भरके। गरीबों गरीब हुंदा जावे बंदा, पार्टियां जेबां अपनियां वल चाके, नशियां मार मुकाया पंजाब, जवाना चिट्टे नाल मुंह काला करके। लै डूंगा सा भगत सिंह ने, लै डूंगा सा भगत सिंह ने, मित्रां दा खिचिया सी हथ फड़ के, पैलियां वल नूं सी भज्जे काबर के, दिल सी सब दे जोरां ना तड़के। के औखड़े पैरां हेठ आया सी कुछ जान चक करके, अध जली लाश सी किसी अबला दी, अध जली लाश सी किसी अबला दी, जिनू देख रूवी जावे कंब के, पत रोली मत रोली फिर अंश मिटा देना सुआ करके। पगला टकिया सी मोई नू, पगला टकिया सी मोई नू, कंबिया भगत सिंह वी सा परके, मावां तियां ता हुंदियां सी सांझियां, मावां तियां ता हुंदियां सी सांझियां, हुबिया सी पुराना समा याद करके। चल यारा ए देश नी मेरा, चल यारा ए देश नी मेरा, हंजू सन अखां चो छलके, कुर्बानी अजाई असाई नी दित्ती, कईयां दित्ता सी साथ नाल खड़के, पर कुर्बानियां तनित हो रही अजे भी, पर कुर्बानियां तनित हो रही अजे भी, धियां दी तुख दी चिता विच चिणके, किसनू सोजी दवांगे असी, किसनू सोजी दवांगे असी, दोष किरे सिर जाइए मड़के, ए नहीं ओ पंजाब ए साडा, ए नहीं ओ पंजाब ए साडा, ए नहीं ओ ए देश साडा, रूह तक वलुंदरी जांदी है इस देश दी कोची हालत तक के, ना लावो साडे बुत्तां नूं चुराया ते, ना लावो साडे बुत्तां नूं चुराया ते, नहीं आना हुण भगत सिंह ने परत के, नहीं आना हुण भगत सिंह ने परत के।
3: हार्मन रेडियो 24/7।

तुहाडी आवाज, तुहाडी खबर, तुहाडी कल, तुहाडे अंदाज च। आओ बनाइए समाज नू बेहतर। आले दुआले किन्ना कुछ वापरदा है जो खबरां दा हिस्सा नहीं बनदा। खबर ओ जो बेहतर समाज दा निर्माण करे। तां फिर आओ भेजो अपने आले दुआले दीआं खबरां। तुहाडी आवाज, तुहाडी खबर, क्योंकि गल इंज बनदी है।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तुहाडे अंग संग।
1: उन्हां सानू जितन दा चोना छड़ दिता है, बदले च बस असी जीना छड़ दिता है। दुनिया की अख किते वेख ना लवे डुलते नू, अखां च सुरमा ही पौना छड़ दिता है। चेतियां च विसरे ना चेहरा उस चंद्रे दा, जिन्नू हुण असी याद आउणा छड़ दिता है। बेगाने बैठ हसते ने, रोंदियां नू वेख सानू, अपणियां ने जदों दा वराउणा छड़ दिता है। सुपने सजाए साडे टुट फुट चूर हो गए, सुपने सजाए साडे टुट फुट चूर हो गए। मुड़के ना आउणा असी सोना छड़ दिता है, मुड़के ना आउणा असी सोना छड़ दिता है। तेरे बिन की मेरे कोल, इदां यार कबोल ना बोल। रुखा जा सलूक ना कर, आशक ने थोड़े हुंदे सोल। मोहब्बत मेरी महंगा मोती, एक अखां वांगू तां ना रोल। दिल किते होर बजता नहीं, किते ता तेरे अगे खोल। असी तां सिद्ध पदरे च माना, करना तूं हुण गल्लां कोल। इश्क जहर दियां कुट्टां भरना, नित दिन पल पल मरना। इश्क गमां दे दरिया विच डुबना, हंजुआं दे हड़ विच तरना। इश्क यार नूं रब वांगू पूजना, उहदी कंजरी बन के नचना। इश्क दी फितरत ना जितना, इहदा शौक मुड्डो ही हरना, इहदा शौक मुड्डो ही हरना। बस कर कुछ ना ही बोल, झूठां वाला कुफर ना तोल। सोची ना समझता नहीं मैं, कर दी है जो गल्लां कोल। रिश्ता साडा बचना ही नहीं, दित्ते जेकर पेत मैं खोल। इश्क छुपा के बहुता रखना, कमलिए तू तां वजाते टोल। इन्हां विच मैं डुब जावांगा, आ मगर मछी हंजू ना डोल। विछड़न दी रट बैठी लाई, बचना की दस मेरे कोल। गली दा कोई कख थोड़ी है, एवें मेरा प्यार ना रोल, एवें मेरा प्यार ना रोल। कोई समय मेरा वक्त सी तेरा, जा मैं हुण बर्बाद नहीं करता। तेरे विच दस ऐसा की है, जा मैं तेनू याद नहीं करता। मेरे लिए तू खुदा ना कोई, जा मैं कोई फरियाद नहीं करता। तू तड़फ ही जिरच मेरे, जा मैं हुण आजाद नहीं करता। हुण भरोसा ना प्यार वफा विच, जा मैं तेरे बाद नहीं करता।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो। accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो 24 घंटे
4: हरमन रेडियो।
5: क्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
6: हरमन रेडियो 24/7
7: सैड या रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो।

0: हारमन रेडियो 24/7।
1: रब बारे इजराइल दी एक कहावत अनुसार जे रब धरती ते रहिंदा हुंदा तां लोकां ने उसदे घर दीआं बारियां भी तोड़ देणियां सन। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हारमन रेडियो दे नाल।

0: रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे सत्ते
2: दे। कदे किसे दे दर्द दी दवा बन के वेखी, कदे आउंदा जांदा किसे दा साह बन के वेखी, कदे हिजरां दी अग दी सवा बन के वेखी, तैनू फिर पता लगेगा किन्ना दर्द है दुनिया ते। कदे भटके हुए राही दा राह बन के वेखी, कदे किसे विछड़े दी थां बन के वेखी, कदे किसे अनाथ दा प्यो जा मां बन के वेखी, तैनू फिर पता लगेगा किन्ना दर्द है दुनिया ते। दो वक्त दी रोटी ले जदों तमाशा बनना पैंदा है, होरां नू हसाउण लई खुद हासा बनना पैंदा है, अपने दर्द लुका के जदों दिलासा बनना पैंदा है, उदों पता लगदा है किन्ना दर्द है दुनिया ते। कदे रोंदी मां दे हंजुआं दा वहा बन के वेखी, विछड़िया नू मिलाउण दी वजह बन के वेखी, ओए बलजीत पहले प्यार दी सलाह बन के वेखी, तैनू फिर पता लगेगा किन्ना दर्द है दुनिया ते। अपने लई नहीं दूजियां लई भी जी के देखी, होके बेकसूर सुनी ताने बुल सी के वेखी, मन के भाणा जहर हिजर दा पी के वेखी, फिर तैनू बलजीत दे लिखे बोल याद आउणगे के सच्ची बड़ा दर्द है दुनिया ते, बड़ा दर्द है।

0: सुनाओते सुनाओ अर्बन रेडियो।
1: दुख भी बथेरे परेशानियां भी बहुत ने, बल्ले विच लाभ बड़े हानियां भी बहुत ने, तंगी ते गरीबी थले दबियां ही बीत गईयां, जग उते ऐसियां जवानियां भी बहुत ने। चंगा होवे जे तू कोई जख्म भी दे देवें, तेरियां असां ते मेहरबानियां भी बहुत ने, थोड़े बहुते शायद असी सच्चे सुचे होवांगे भी, पर साडियां दिलां च बेईमानियां भी बहुत ने। देबी चाहुंदा इश्के च नवी चोट खाणी कोई, उंज भावें पहलियां निशानियां भी बहुत ने। देबी मखसूसपुरी साहब दा अंदाज ते परमिंदर सिंह पापा टोई टोई दी आवाज।

फौजां बारे सियाणे कहिंदे हन कि जिथे फौजां तैनात हुंदियां हन उथे सूलां ते कंडियाली झाड़ियां दी फसल पैदा हुंदी है।

0: ब्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हारमन रेडियो 24/7
2: अपने लई नहीं ता उन्ना लोकां लई कामयाब बनो जो तुहानू ना कामयाब वेखना चाहुंदे ने। असल सियाणप इही है कि परमात्मा दी रजा विच राजी रहो, सुपने सजाओ, मेहनत करो, पर उस तो बाद भी जो भी मिले उसनों कबूल करो, अते जो भी मिले आ होवे उसे विच खूबसूरत

हरमन रेडियो नूं तुसी कई तरीके दे नाल सुन सकते हो। एप्पल एप स्टोर तो तुसी आईफोन आईपैड अते आईपॉड टच ले हरमन रेडियो सर्च करो। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म ते तुसी गूगल प्ले स्टोर तो फ्री डाउनलोड करो। ब्लैकबेरी नोकिया अते विंडो मोबाइल ले तुसी ट्यून इन एप डाउनलोड करके हरमन रेडियो सर्च करो। harmanradio.com ते भी तुसी सुन सकते हो। कोई भी वाईफाई रेडियो सेट ते भी साडे चैनल उपलब्ध हैं।

0: ओ आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैनूं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों कित्थों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तों। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर। जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहती सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दीआं सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस दी एड देण लई जां किसे भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ
3: ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।
4: ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੰਟੇ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
5: ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗੀਤਾਂ।

0: कोशिशा सदा रहियां ने कि कुछ अजिहा करिए कि साडे अपणियां नूं सदा माण रहे। तुहाडे संग तुहाडे तों तुहाडे लई ही सदा ए आवाज है। बहुत कुछ कर चुके हां, बहुत कुछ करना अजे बाकी है। आओ इस काफले संग दिओ सानू सहयोग। तुहाडी हाजरी साडे लई मायने रखदी है। तन मन धन नाल इस प्रवास दे सारथी बनो दोस्तो। हरमन रेडियो तुहाडे सहयोग नूं हमेशा सलाम करेगा। इस दिल पंजाबी दी सुहानी आवाज पंजाबी नूं स्पॉन्सर करो। साडी वित्तीय मदद करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां विजिट करो साडी वैबसाइट harmanradio.com।
1: ओल्ड इज गोल्ड समय दे गीतां दा आनंद माणन दे लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: दोस्तों मैं दीप जगदीप ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो हरमन रेडियो हुण मैं हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी साहित विचों प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते अणमुल्ले विचार लेके हाजिर हुंदा हां मेरियां होर भी रचनावां सुनन लई अते अपने कीमती सुझाव देण लई यूट्यूब पर मेरा चैनल पंजाबी साहित्यिक मंच देख सकते हो।
1: सुनते रहो पुराने गीतां दी खूबसूरत दुनिया हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दे संग।

0: आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा ओगल ओगल वेरवा पोटा पोटा विथ।
1: जदो दूर नेड़े दी सकीरी अनुसार ही रिश्तेदारां ते साख संबंधियां नाल वर्ताव कीता जांदा है उदो ए अखाण बोलदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया।

0: नबलिया मैल हाउ जमा कार्ड कताली छब्बी चलिंजा बानवे सत ला भी ठीक है ए ते सिटो सानू सने जेड़ा दुआबे आले आलू सड़ जाते होंगे सड़कां ते एदा सिटो सुने
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा साउथ गीत
2: वे मैनू अम्मी विचो तू दिसे पर तेरे विचो अम्मी नहीं।

औरतां दे हालात विच सुधार ना होण तक संसार दा विकास भी संभव नहीं। कोई भी पंछी इको कंब दे सहारे कदे नहीं उड़ सकता।

0: जिंदगी हंजू कदे तारा कदे जुगनू बनी, जिंदगी हंजू कदे तारा कदे जुगनू बनी, मैं बदल दे रंग इस दे देखदा ही रह गया।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो ते।

पेत बारे अफरीका दी कहावत है कि बेपरोसे वाले बंदे नू पेत दसना दाणियां नाल परे उस थैले वांग हुंदा है जिस दे हेठां मोरी होई हुंदी है। विद्या विचारी तां पर उपकारी।

0: साड़ी अमीर सभ्यता दिया निशानियां कर दा पेती लंका टाए।
1: इस दा भाव है कि कर दा पेती ज्यादा खतरनाक हुंदा है।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: बदलाव कुदरत का खूबसूरत नियम है, सो असी बदल रहे हैं ताकि बेहतर कर सकिए। असी आ रहे हैं नवे अंदाज नाल ताकि संवाद होर खूबसूरत बना सकिए। स्टूडियो दे इस पार असी, स्टूडियो दे उस पार तुसी, आओ मिलके जिंदगी दी खूबसूरत जुगलबंदी पेश करिए। तुहाडा सहयोग साडा हौसला, हरमन टीम हरमन परिवार दे संग पूरे मन दे नाल। आखिर कुछ बेहतर करना ही ता जिंदगी दा राग है।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप दी।

यात्रा बारे सियाने कहंदे हन कि कर बैठे बुड्ढे नालों यात्रा करके मुड़े बच्चे नूं ज्यादा कुछ पता हुंदा है। सोने विचारां दे अंग संग हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया नाल।

फिल्म स्टार एवं गायक किंग पी चौहान और गायक गुरलेज अख्तर का नया गाना आपके पेशे खिदमत है, जिसका नाम है बलमा बलमा अपडेटेड बलमा।

0: गाना किने बंद कीता?
1: जेड़ा कुछ ना कहे सिर्फ ओही आलसी नहीं हुंदा, जेड़ा अपने काम नू होर भी चंगी तरह कर सकदा होवे पर ना करे ओ भी आलसी ही हुंदा है। विचार सुकरात, चंगे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, बाल दी ना मरे मां बुड्ढे दी जोरू।
1: भाव ए है कि तीवी दे मरण नाल बुड्ढे पुरुष दी अते मां दे मरण नाल बच्चे दी माड़ी हालत हो जांदी है।
0: मुहावे अते अखान साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया।
2: Just kidding.

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकते हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

बहाने बारे सियाने कहंदे हन कि जिस नूं नचना ना आउंदा होवे ओ कहंदा है धरती गिली है। सुने विचारां दे

प्यार एक मिठा जिहा एहसास। गर्मी दी सजरी सवेर विच गुलाब दे मत्थे ते एक ओस दी बूंद, बारिश दी पहली बूंद ते पपीहे दी गूंज, ते सर्दी दी ठरदी धुंधली सवेर विच सरों दे गर्दन मटकांदे फुल्लां नूं होर पलत्तन मलदी मिठी जी धुप, एक अलसाई सवेर नूं जगांदी वंगां दी छणकार, मत्थे नूं चुमदी अखां नूं अपने पलकां नाल छुहांदी, हथेली ते उंगलां नाल अपना नां लिखदी, कन्नां दे कोल हौले जे हसदी ते मुस्कुराहट नूं चुमदी एक निग्गी धुप दी किरण। प्यार प्यार दी परिभाषा तो बहुत डूंगी, किसे दे कोल ना बह के भी ढेर गल्लां कर जाना, किसे दे कोल ना रह के भी उहदी छाती ते सिर धर के सौ जाना, किसे तो दूर रह के भी चेता धड़कण वांग अंदर रखना, ते होर बहुत कुछ। यह तेरी समझ तो बाहर भी हो सकता है, क्योंकि प्यार कोई बिस्तर ते मिलन वाली शय नहीं, यह शरीरां दा मेल नहीं रूहां दा एहसास है। प्यार जे तेरी समझ विच नहीं कोई फिक्र ना करना, हर इंसान नू प्यार दी समझ होए जरूरी नहीं, हर इंसान नू प्यार मिले ते उह सांभ रखे जरूरी नहीं, तू भी मेरे वांग सोचे ते मैनू प्यार करे ए भी जरूरी नहीं, की पता ए एहसास तेरे अंदर कदे बढ़िया ही ना होए, पर तू किसे नू दसी ना कि तू प्यार नू नहीं समझ सकता, अपने आप नू भी नहीं, बड़ा खाली ते कल्ला महसूस करेगा जदों भरे दुनियावी महफलां च हत्थां दी उंगलां च उंगलां फसाउण लई सिर्फ अपना ही दूजा हथ होएगा, कोठी कार रुतबा लोग शानो शौकत जरूरी ते दुनियावी फरेब घर भर सकदे ने, पर असलों वांझा ते गरीब प्यारों वांझा हुंदा है। जदों हथ घुटण नूं अपना ही दूजा हथ, जद गलवकड़ी दा निग देण नूं अपनी छाती नाल लाउण नूं, बाहां अपने आप नूं ही कलावे च लै सकण, तां याद करी मैं आई सां तेरे कोल, वांझा ते गरीब प्यारों वांझा हुंदा है। जदों हथ घुटण नूं अपना ही दूजा हथ, जद गलवकड़ी दा निग देण नूं अपनी छाती नाल लाउण नूं, बाहां अपने आप नूं ही कलावे च लै सकण, ता याद करी मैं आई सां तेरे कोल, ते तू मैनू मोड़ दिता।

0: डोक में फसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
2: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
1: रुक दे फट्टा।
3: ओए बल्लिया बजारता हुई ते बजारता हुई इन्हां नूं समझना औखा ही हुंदा।
4: चलो बजारता तां मान लिया, अब बजारता नूं समझना क्यों औखा, इन्हां नूं तां जनता आप चुनदी।
3: जदों एक बारी कुर्सी नूं हथ पै जांदा ना फेर नहीं कुत्ती भौंकदी सुणदी। नाले सरकारां नूं तां की सुननी आ, इह तां थल्ले छोटे छोटे जथेदारां नूं नहीं सुणदी।
5: सुनन भी क्यों जदों अगलिया दी सरकार आ।
3: पिछले हफ्ते तीन जथेदार एक मोटरसाइकिल ते सवार चढ़े जान। ट्रैफिक पुलिस वाले ने अपने जान हाथ दिता भी इन्हां दा कट दिया चलान। भज के जाके मूहरे कहना जथेदार जी मोटरसाइकिल खड़ाइए। कहना यार असी तां पहला ही मसा तीन बैठे तैनू कित्थों चढ़ाइए।
4: ऐनी चतरे दी चढ़ाई होवे,
5: नवी सरकार आई होवे,
4: ओदे ते कोई कथा ना सुनाई होवे,
5: गल जचदी नी।
3: पटुआ थोनू सब पता भी मेरे भी कथा पचदी नी। लो सुनो फिर। केरा सुनियारियां दा मुंडा गया कनेडा। दो साल बाद उदे प्यो ने सोचिया के जाके वेखिए तां सही उत्थे काका की खेडदा खेडां। एयरपोर्ट तो लैण बापू नूं मुंडा वड्डी गड्डी विच आया, वेलकम करके जफ्फी पा के फिर गोडी हथ लाया। घरे जांदियां सार नाश्ता सोने दी थाली च कराया, वेख सोने दी थाली नूं मन बापू दा ललचाया। बापू सोचे पुत मेरे ने लगदा मोटा नावा कमाया, मैं तां इहनूं जवाक जिहा ही समझिया सी पर इह तां इत्थे पूरा छाया। मुंडा जदों सी पासे होया नाश्ता उहनूं करा के बापू ने थाली बैग च पा ली मुंडे तों अख बचा के। सोने दी थाली च फेर आ गया जदों दोपहर दा खाना, पूंझ पांझ के फेर लकोली काका समझ ने आना। वेख सोने दी तीजी थाली डेले आ गए बाहर, लंघे ना अंदर रात दी रोटी लई हाक मुंडे नूं मार। कहना काका वेख के तेरी सोन कमाई, वाछा मेरिया खिलिया ने, रोटी रूटी मैं बाद च खाऊंगा, पहला ए दस घर च सोने दियां थालियां किन्नियां ने। हाथ जोड़ के खड़ गया मुंडा, कहना बापू जी थोतो कादे लको ने। पर गुस्सा ना करियो, घर च सोने दी थाली ता इको ही आ, पर सनियारे दो ने।
5: क्यों मासी कुछ पई पल्ले, कथा की समझा गई?
4: मैनू एक गल दी समझ नहीं आई के कथा तो सुनियारन दी चलाकी दी चलदी सी, विच वजारत कित्थों आई?
3: ओए तेज बुद्धि आले सब समझ गए, पर चंद कोरे मैं की करां, थोड़े डल दिमाग स्लो ने। लो सुनो सिद्ध पुत्री गल ए आ के सीएम दी कुर्सी ता एक आ पर बादल दो ने।
5: चाचा किधर तुर पिया, लगदा मासी ए नहीं टलदा।
3: घो गया जा तेनू 20 वारी समझाया, मैनू याद करा दिया कर, मैं भुल जा नवे की ना हलदा।
6: सुनो ते सुनाओ Urban Radio।

0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। कमली कुड़ी दोपहरे गिद्दा।
1: इस दा पाव है मूरख कुछ करन लग्यां समा नहीं विचारदा।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सैक्शन विजिट करो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

उतरना ही सी मैं सफ़ियां ते इश्क आजाद दा वेख गया नफ़ियां ते जिड्डी वड्डी खबर है उस तो वड्डा सबर है आशकां दे पल्ले ही कातों ओंदी सदा कवर है।

इतिहास एक अजिहा चिट्ठा है जिस विच ज्यादातर झूठिया ते गैर जरूरी घटनावां शामिल हुंदियां हन जो कि राजियां दे इर्द गुर्द घूमदियां हन। राजे जो कि लुच्चे बदमाश किस्म दे बंदे हुंदे हन अते उनां दे सिपाही सिरे दे मूर्ख हुंदे हन। विचार अमर बो विरसे चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: सुनावा खान सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा काली अगे टोए ही टोए।
1: इस दा पाव है कि काली ते जल्दी जल्दी विच कीता कम हमेशा खराब हो जांदा है।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: केड़े मंत्री ने किया एक बार फिर लोकतंत्रता नु नीलाम ते केड़ी बॉलीवुड हस्ती दे प्यार दे चर्चे हो गए आम। इस सब नाल तुहानू जाणू करवाएगा तुहाडा अपना हरमन रेडियो। तो जुड़ो हरमन रेडियो दे नाल सचेत होवो अपने आले दुआले बारे, अपने देश बारे, विदेश बारे। इत्थे तुहानू मिलणगियां ना सिर्फ खबरां बल्कि खबरां दी मरम्मत भी, सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे अपने हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसीं।

रीति रिवाज बारे सियाने कहंदे हन कि नवी थां दे रीति रिवाज मन्नो, जे नहीं तां उत्थों भज्जण दी करो। विद्या विचारी तां परोपकारी। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: दी अमीर सभ्यता दियां निशानियां सावरियां दे टुकर खादे पुल गए पेके।
1: ए अखाण उदों वर्तदे हन जदों कोई बंदा किसे होर थां जाके अपने पिछले सज्जणा मित्रां नूं भुल जावे।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, मेरा झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, खिड़ेगी हमेशा हकीकत खिड़ेगी। इसलिए असि लेके आने तोड़े लिए ताजा तरीन सोहनिया खुशनुमा सचिया सुचिया खबर का सिलसिला। देश ते विदेश दियां खबरां ते जानकारियां दी अपनी डेली डोज ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल, जो दवेगा तुहानू तुहाडे कल अज ते कल दी पूरी खबर। तुहाडा अपना हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।

तभी चलो काम से सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया

मंत्री बेंजामिन डिजराइली अनुसार प्रधानमंत्री बन के मेनू लग रहा है जिवें मैं तेल नाल लिबड़े तिलकमे खंबे दी शिखर ते चढ़ के बैठा हां। चिंबड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

चल कुछ नाम रखिए उना बच्चियां दे जो साड़े नहीं साड़े ही ने पर चल कुछ मैक वंडिये जो साड़े पास नहीं पर है ता सही साड़े कोल के दे चल आश्रम दे परिंदियां वांगू ब्रह्मांड दी सीमा तो वाद उड़िये जो साड़ी समर्था नहीं उड़ी लवांगे पर फिर भी

0: कुछ रंगा दा अनुवाद करिए, चल कुछ रंगा दा अनुवाद करिए, किते बेबस दरिया च कुछ धुप दी किश्ती ठेलिए, किसी दुख दे घर च कोई सुपना बीजिए, चल पिघलदियां हसरतां दा इतिहास अनलिखिया छड हस पईए, ते पीड़ नूं फुल्लां दी महक वांगू इक दूजे नूं मानिए, हस पईए ते पीड़ नूं फुल्लां दी महक वांगू मानिए इक दूजे नूं, जिस्मां तों अगे जाण दईए इक दूजे नूं, जिस्मां तों अगे जाण दईए। शायर कहिंदा किन्नी हुसीन सी तेरी अलविदा दी शाम,
1: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਮਨ ਰੇਡੀਓ ਜੀ।

0: आओ सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, हथी कड़े टिड भुख नाल सड़े।
1: जदों कोई आर्थिक पक्षों कमजोर बंदा बाहरी तौर ते अपनी शानो शौकत दा दिखावा करे उदों इंज आखदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया।